सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएं, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथने दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा।

0: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितली शांति मिले है जी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
0: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
3: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
5: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके
4: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
5: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे
4: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है
5: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
4: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

साथियों, भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होती, भाषा समाज की पहचान, संस्कृति की आवाज और विचारों की ताकत होती है। जब शब्द समाज की सच्चाई से जुड़ते हैं, तब साहित्य केवल किताबों में नहीं रहता बल्कि बदलाव की आवाज बन जाता है। भाषा से जुड़ती है पहचान, साहित्य से बनती है चेतना, जागरूकता और नागरिकों से मजबूत बनता है राष्ट्र।

फिर आकर मौसम नया बनाए।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित है हिंदी भाषा और राष्ट्र निर्माण में साहित्यकारों के योगदान को लेकर। जागृति जी, हम देखते हैं कि हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमें हिंदी भाषा के महत्व को समझने के साथ साथ उन महान साहित्यकारों को याद करने का अवसर भी देता है जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जागरूक किया,
0: बिल्कुल
1: लोगों में आत्मसम्मान जगाया और राष्ट्र निर्माण की सोच को मजबूत किया।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अलग अलग भाषाएं, बोलियाँ, परंपराएं और संस्कृतियाँ हैं, फिर भी इन विविधताओं के बीच एकता की भावना दिखाई देती है। साथियों, इस एकता को मजबूत करने में भारतीय भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हिंदी ने देश के कई हिस्सों के लोगों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी केवल बोलने और लिखने की भाषा नहीं है श्रोताओं, बल्कि भावनाओं, विचारों और अनुभवों को समाज तक पहुंचाने का माध्यम भी है।
1: जी जी।
0: हम देखते हैं अंजलि कि हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में साहित्यकारों का योगदान बहुत जरूरी है। साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को केवल मनोरंजन नहीं दिया बल्कि लोगों को सोचने, समझने और बदलाव के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं, अन्याय, गरीबी, शोषण, अशिक्षा और भेदभाव जैसे मुद्दों को सामने रखा।
1: बिल्कुल जागृति जी, भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती है, भाषा हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा हमारी संस्कृति, परंपराओं, अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस भाषा में हम माँ की लोरी सुनते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं, वह भाषा हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी होती है। भारत अनेक भाषाओं और बोलियों का देश है, यहाँ हिंदी के साथ तलीम, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, राजस्थानी और अनेक अन्य भाषाएं, बोलियां और हमारी संस्कृति समृद्धि को दर्शाती है। श्रोता साथियों, हिंदी भी इसी बहुभाषी भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है।
0: जी हाँ,
1: हिंदी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी साहित्य ने समाज की समस्याओं, संघर्षों और सपनों को शब्द देकर राष्ट्र की चेतना को मजबूत भी किया है।
0: जी हाँ अंजलि, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण को लेकर बातचीत करें तो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा को आधुनिक स्वरूप देने और समाज में जागृति पैदा करने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, सामाजिक चेतना और तत्कालीन परिस्थितियों की झलक भी मिलती है।
1: जी जी।
0: उन्होंने हिंदी को जन सामान्य की भाषा बनाने पर जोर दिया। उनका साहित्य लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव देता है। साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य को व्यवस्थित दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: जी जी।
0: उन्होंने लेखकों को सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से हिंदी गद्य और साहित्य में गंभीर विषयों को स्थान मिला। उनके समय में साहित्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा श्रोताओं, बल्कि समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण का माध्यम भी बना।
1: बिल्कुल जागृति जी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाषा और साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। जब देश अंग्रेजी शासन के अधीन था तब साहित्यकारों, कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना जगाई।
0: बिल्कुल,
1: कविताएं जन संभावनाओं में पढ़ी जाती थी, गीत लोगों में उत्साह भरते थे, लेख और समाचार पत्र समाज को जागरूक करते थे। साहित्य ने लोगों को यह समझाया कि वे केवल अलग अलग जातियों, क्षेत्रों और समुदायों के लोग नहीं हैं, बल्कि एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा भी हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब तलवार नहीं पहुंच पाती वहां कई बार विचारों की शक्ति लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। हिंदी साहित्य के विकास में जैसा कि आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागृति जी बताया, यही बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो श्रोता साथियों, इनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। उनके संपादन और लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्र प्रेम और गंभीर चिंतन को स्थान मिला।
2: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी भाषा को लेकर बात कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि लोक भाषा और संस्कृति का संरक्षण क्या है। हिंदी साहित्य की शक्ति केवल मानक हिंदी में नहीं बल्कि कई विभिन्न बोलियों और लोक भाषाओं में भी है। राजस्थान की वागड़ी, ब्रज अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली जैसी भाषाई परंपराएं भारतीय संस्कृति को समृद्ध करती है। अंजलि, साहित्यकार लोकगीतों, लोक कथाओं, कहावतों और स्थानीय परंपराओं को शब्द देते हैं।
1: जी जी,
2: इस तरह वे हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। ये विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है श्रोताओ, जहाँ भाषा के साथ जीवन शैली, प्रकृति से जुड़ा और पीढ़ियों का ज्ञान भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं, आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र चेतना के कवि के बारे में, तो श्रोता साथियों, हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त का नाम राष्ट्र चेतना से जुड़ा हुआ है। उनकी कविताओं ने लोगों के मन में देश प्रेम और आत्मसम्मान की भावना जगाई। उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज और राष्ट्र से जुड़े विषयों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि उनकी रचनाएं लोगों को अपने इतिहास, समाज और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: साहित्य की यही शक्ति कि वह केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि मनुष्य के भीतर प्रश्न और विचार भी पैदा करता है।
1: जी हाँ अंजलि, आज के साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई पुस्तकें, ब्लॉग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हिंदी साहित्य को नई पहुंच दी है। आज कोई साहित्यकार अपने विचारों को कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। डिजिटल माध्यम पर लिखी गई बात तेजी से फैलती है, इसीलिए साहित्यकारों को तथ्य, भाषा और सामाजिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना होगा। श्रोताओं, जैसा कि हम हिंदी भाषा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो अंजलि, राष्ट्र निर्माण में युवा सबसे बड़ी शक्ति है। अगर युवा साहित्य पढ़ते हैं तो उनमें भाषा के साथ विचार करने और सही गलत को समझने की क्षमता भी विकसित होती है। युवाओं को केवल परीक्षा के लिए साहित्य पढ़ने के बजाय जीवन को समझने के लिए भी साहित्य पढ़ना होगा। श्रोताओं, प्रेमचंद से समाज को, दिनकर से साहस को, महादेवी वर्मा से संवेदना को और अनेक साहित्यकारों से जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साहित्यकारों ने केवल देशभक्ति पर ही नहीं लिखा, उन्होंने समाज की समस्याओं को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा और महिलाओं की स्थिति जैसे विषयों पर साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज का ध्यान आकर्षित किया है। साहित्य हमें केवल ये नहीं बताता कि समाज कैसा है, बल्कि सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि समाज कैसा होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जब पाठक किसी कहानी में किसी गरीब किसान का संघर्ष पढ़ता है तो उसके भीतर संवेदनाएं पैदा होती हैं। जब वह किसी महिला के संघर्ष को पढ़ता है तो समाज में समानता की आवश्यकता को समझा जाता है।
1: जी हाँ।
0: जब वह किसी बच्चे की कठिनाइयों के बारे में पढ़ता है तो शिक्षा और संरक्षण का महत्व समझता है। इस प्रकार साहित्य समाज में मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जिस पीढ़ी के हाथ में किताब होती है उसके हाथ में अपने भविष्य को समझने की शक्ति भी होती है। श्रोताओं, आज के साहित्यकार की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक है। समाज में तेजी से बदलाव हो रहे हैं अंजलि, ये हम सभी देख रहे हैं। तकनीक भी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही अकेलापन, तनाव, सामाजिक दूरी और गलत सूचनाओं जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही है। ऐसे समय में श्रोताओं, साहित्यकारों को ऐसा साहित्य रचना होगा जो समाज को जोड़ने का काम करे, न कि बांटने का। साहित्य में विविधता का सम्मान हो, प्रकृति की चिंता हो, समानता हो, शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य और मानवीय संवेदनाओं को स्थान मिलना चाहिए। जिस प्रकार हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास केवल शब्दों का इतिहास नहीं श्रोताओं, ये भारत की सामाजिक चेतना, संघर्ष, संस्कृति और परिवर्तन की यात्रा भी है। साहित्यकारों ने अपने शब्दों से समाज को आईना दिखाया अंजलि, लोगों को जागरूक किया और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाया।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज के बच्चे और युवा मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में अधिक समय बिताते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तकनीक का उपयोग श्रोता साथियों जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ने की आदत भी उतनी ही आवश्यक है। हमें बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए, उन्हें पुस्तकों से जोड़ना चाहिए, विद्यालयों में कविता पाठ, कहानी लेखन और भाषण प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। स्थानीय साहित्यकारों को स्कूल में आमंत्रित किया जा सकता है। यदि बच्चों को अपनी भाषा में सोचने, लिखने और बोलने का अवसर मिलेगा तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हिंदी सीखने का अर्थ अन्य भाषाओं से दूरी बनाना नहीं, बल्कि हमें हिंदी के साथ साथ भारत की सभी भाषाओं और बोलियों का सम्मान करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: भाषाओं की विविधता हमारी कमजोरी नहीं जागृति जी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक शक्ति है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार और संस्थाओं या बड़ी योजनाओं से नहीं होता। राष्ट्र निर्माण तब होता है जब नागरिक जागरूक होते हैं, समाज में संवेदना होती है, जब युवा अपने भविष्य के साथ देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं और जब हमारी भाषा और संस्कृति जीवंत रहती है। इसलिए हिंदी भाषा को मजबूत करना केवल हिंदी बोलना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी भाषा का सम्मान करना, अच्छे साहित्य को पढ़ना, अपनी लोक भाषा और संस्कृति को बचाना और विचारों को जिम्मेदारी के साथ समाज तक पहुँचाना। कहना चाहेंगे श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, एक शब्द विचार बदल सकता है, एक विचार समाज बदल सकता है और एक जागरूक समाज राष्ट्र की दिशा बदल सकता है अंजलि। इसलिए साहित्यकार केवल कलम चलाने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि समाज की चेतना का प्रहरी भी है।
0: जी,
1: जब हिंदी के शब्दों में संवेदना होती है, सत्य और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी जुड़ती है, तब वही साहित्य राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बन जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। हमारे पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और आधुनिक तकनीक है, लेकिन इन सबके बीच मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: साहित्य हमें यही याद दिलाता है कि इंसान केवल मशीनों और सुविधाओं से नहीं बनता, उसके भीतर भावनाएं, मूल्य और विचार भी होते हैं। आज जब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से जानकारी फैलती है, तब भाषा का जिम्मेदारी से उपयोग करना भी आवश्यक है। हमें अपनी भाषा का उपयोग लोगों को जोड़ने के लिए करना चाहिए, ज्ञान फैलाने के लिए करना चाहिए, समाज में सकारात्मकता का बढ़ावा करने के लिए करना चाहिए, स्थानीय संस्कृति बचाने के लिए करना चाहिए। भाषा का उपयोग नफरत और भेदभाव फैलाने के लिए नहीं बल्कि संवाद और समझ बढ़ाने के लिए करना चाहिए।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, जाना हिंदी भाषा के बारे में, और आप देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम

0: इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए महान पुरुष के व्यक्तित्व के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारस्कर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
0: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपने साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम कथा कहानी को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है बप्पा की सिख और आरव का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन मैं प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है बप्पा की सिख और आरव का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी केवल भगवान गणेश की पूजा का पर्व नहीं है, यह हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देता है। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभारंभ का देवता माना जाता है, इसीलिए किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले हम उनका स्मरण करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या गणेश जी को याद करना केवल पूजा और आरती तक सीमित है, या फिर उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना भी गणेश चतुर्थी का हिस्सा है। श्रोता साथियों, आज की ये कहानी एक ऐसे ही युवा की है जो गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की मूर्ति तो घर लेकर आया, लेकिन बप्पा ने उसके जीवन में उससे कहीं बड़ी चीज, एक नई सोच स्थापित कर दी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। तो श्रोता साथियों, हम देख रहे हैं कि कल गणेश चतुर्थी है और कल सभी के घर में बप्पा आने वाले हैं। ये कहानी भी इसी से जुड़ी है कि अगर हम बप्पा को घर पर ला रहे हैं तो उनका किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह से उनकी पूजा करनी है, और सिर्फ ये 10 दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन में बप्पा को किस तरह से हमारे जीवन में स्थान देना है, वो भी आज के इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। साथियों, कहानी शुरू होती है इस तरह से। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवा रहता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था और उसके सपने भी बड़े थे। वो चाहता था कि पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करे और अपने गांव के युवाओं के लिए भी कुछ करे। लेकिन एक समस्या थी, आरव के पास सपने तो बहुत सारे थे पर उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करने की आदत नहीं थी। कभी वो मोबाइल पर घंटों समय बिताता, कभी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता और कभी अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को बता देता था। जब परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते श्रोताओं, तो वो कहता, मेरे पास पढ़ने का सही माहौल ही नहीं था। जब किसी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिलती तो कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। और जब कोई उससे पूछता कि भविष्य में क्या करना है तो वो कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में सोच लेंगे। साथियों, आरव के पिता अक्सर उसे समझाते हैं, बेटा जिंदगी में अवसर हर किसी को मिलता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन और धैर्य चाहिए होता है। आरव मुस्कुरा देता, उसे लगता था ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। फिर क्या था दोस्तों, फिर एक दिन गणेश चतुर्थी आई। पूरे शहर में उत्साह था, गलियों में सजावट हो रही थी, बच्चे गणपति बाप्पा की छोटी छोटी मूर्तियां लेकर घर आ रहे थे। आरव भी अपने दोस्तों के साथ गणेश जी की मूर्ति लेने बाजार गया। मूर्ति लेकर लौटते समय उसके दोस्त ने कहा, इस बार हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी सजावट होगी। दूसरे दोस्त ने कहा, और सबसे बड़ा कार्यक्रम भी होगा। श्रोताओं, जैसे कि दोस्त आपस में बातें कर रहे थे तो आरव भी बहुत उत्साहित था। घर पहुंचकर गणेश जी की स्थापना हुई, पूजा हुई और आरती हुई। आरव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बप्पा मेरी जिंदगी में सफलता दे दीजिए। पूजा समाप्त हुई तो आरव अपनी दादी के पास बैठ गया। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा बप्पा से क्या मांगा? आरव ने कहा, सफलता। तभी दादी ने पूछा, और सफलता पाने के लिए तुम क्या करोगे? उस समय श्रोताओं, आरव चुप हो गया। दादी ने फिर से पूछा कि क्या करोगे? सिर्फ बप्पा से मांगने से रास्ता नहीं बनता है आरव, बप्पा रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। ये बात आरव के मन में बैठ गई। श्रोताओं, दादी ने गणेश जी की मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है कि गणेश जी के कान इतने बड़े क्यों दिखाई देते हैं? तभी आरव बोला, शायद इसीलिए कि वे सबकी बातें सुनते होंगे। दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, हमें भी जीवन में अच्छा श्रोता बनना चाहिए। आज का युवा बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन सुनना कम चाहता है। दादी ने कहा, अगर तुम अपने माता पिता की सलाह सुनोगे, अपने शिक्षकों की सीख सुनोगे और अपने अनुभव से सीखोगे तो तुम्हारी कई गलतियां शुरुआत में ही रुक सकती है। श्रोता आरव बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी दादी ने आगे कहा, सुनना कमजोरी नहीं है बेटा, सही बात को सुनकर स्वीकार करना समझदारी है। दादी जी ने गणेश जी की आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा कि गणेश जी की छोटी आंखें हैं, हमें एकाग्रता की सीख देती है ये आंखें। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, एक संदेश आता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, एक वीडियो आता है तो पढ़ाई भूल जाते हो, फिर कहते हो कि समय नहीं मिलता। आरव को लगा जैसे दादी उसकी ही कहानी बता रही हो।
दादी ने कहा, जिस युवा का लक्ष्य स्पष्ट होता है वो अपने समय और ध्यान की रक्षा करता है। आरव ने पहली बार श्रोताओं महसूस किया कि समस्या समय की कमी नहीं है बल्कि ध्यान से बिखराव की है। तभी दादी बोली, श्रोताओं कि गणेश जी की सुंड हमें एक और बात सिखाती है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी हमें असफलता मिलती है, कभी रास्ता आसान हो जाता है, कभी कठिन रास्ते होते हैं। समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को देखकर रुकता नहीं, वो रास्ता बदल लेता है। तरीका बदल सकता है बेटा, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये बातें दादी आरव को बता रही थी दोस्तों, तो आरव सोचने लगा कि शायद मेरी समस्या यही है, एक बार असफल होता हूँ तो प्रयास भी छोड़ देता हूँ, मुझे प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। और आरव इसी तरह गंभीरता से दादी की बातों को सुन रहा था। अब दादी कहती है कि तुमको मूषक से भी सीख लेनी चाहिए, मूषक यानी चूहा। दादी ने कहा कि गणेश जी के वाहन मूषक की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि गणेश जी के साथ साथ छोटा सा मूषक क्यों है तुम जानते हो। आरव ने सिर हिलाया और बोला हाँ। दादी बोली, ये हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी अपनी भूमिका और महत्व होता है। जीवन में किसी काम को छोटा मत समझो, छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव बनती है। दोस्तों ये बात आरव के मन को बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ ये सोच कर रुक जाता हूँ। तभी दादी ने उसके मन को पढ़ लिया और कहा कि बेटा, बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़ा कदम जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक छोटा कदम ही काफी होता है। तो दोस्तों अगली सुबह जब आरव ने एक कागज लिया और उस पर लिखा कि गणेश चतुर्थी का मेरा संकल्प क्या हो सकता है, उसने 5 बातें अपने कागज पर लिखी कि रोज कुछ समय पढ़ाई और सीखने के लिए वो समय देगा, मोबाइल का उपयोग जरूरत के अनुसार ही करेगा, असफलता से डरकर वो प्रयास नहीं छोड़ेगा, माता पिता और बड़ों की सलाह ध्यान से सुनेगा, साथ ही अपने गांव और समाज के लिए हर महीने एक काम वो जरूर करेगा। कागज उसने अपनी पढ़ाई की मेज के सामने लगा दिया दोस्तों, लेकिन संकल्प लेना आसान था, उसे निभाना तो मुश्किल होता है। अब दोस्तों कुछ दिन बाद उसकी एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, उसके दोस्तों से घूमने के लिए बुलाने आए। आरव का मन तो जाने के लिए था, एक पल के लिए उसने सोचा आज पढ़ाई नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। फिर उसकी नजर सामने लगे कागज पर गई, उसे दादी की बात याद आ गई, बप्पा रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो हमें ही है। आरव ने दोस्तों से कहा, आज नहीं, पहले अपना काम पूरा कर लूं। श्रोताओं दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले कि वाह अब तो तू बहुत बड़ा विद्वान बन गया है। आरव मुस्कुराया और इस बार आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया था, उसने किताब खोली और पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। उस दिन उसने पहली बार अपने मन पर जीत हासिल की थी दोस्तों, उसे समझ आया था कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं खुद की कमजोरियों पर जीत हासिल करनी है। धीरे धीरे आरव की दिनचर्या बदलने लगी, वो सुबह जल्दी उठने लगा, मोबाइल पर समय कम करने लगा, हर दिन कुछ नया सीखने लगा। परीक्षा में इस बार उसके अंक पहले से बेहतर आए थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी दोस्तों कि अब आरव को अपने ऊपर विश्वास होने लगा था। एक दिन उसने देखा कि उसके गांव के कई छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बाद इधर उधर घूमते रहते हैं। तभी आरव ने सोचा कि मैंने शाम को 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और एक छोटी सी शाम की अध्ययन कक्षा शुरू कर दी। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आए, फिर 10 आए, फिर 20 आए, कुछ इस तरह दोस्तों महीनों में गांव के कई सारे बच्चे वहां पर आने लगे। आरव अब समझ गया था कि छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती अगर उसके पीछे बड़ी सोच हो तो। अगले वर्ष गणेश चतुर्थी आने वाली थी। आरव ने देखा कि पिछले वर्ष उत्सव के बाद काफी कचरा जमा हुआ था, उसने अपने दोस्तों से कहा इस बार हम गणेश उत्सव के साथ स्वच्छता का भी संकल्प लेंगे। दोस्तों ने पूछा कैसे, श्रोताओं आरव ने कहा कि हम सजावट में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें दोबारा उपयोग किया जा सके, कार्यक्रम के बाद सफाई करेंगे और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। शुरुआत में कुछ लोगों ने कहा दोस्तों कि इतना सोचने की क्या जरूरत है, लेकिन आरव और उसके दोस्तों ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। लोगों ने देखा कि कुछ युवा केवल उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ गए
श्रोताओं, गणेश चतुर्थी के दिन आरोफे बप्पा के सामने बैठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा पिछले साल मैंने आपसे सफलता मांगी थी, इस बार मैं आपसे सफलता नहीं मांगूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, मुझे सही सोच दीजिए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, गलतियों से सीखने का साहस दीजिए, दूसरों की मदद करने का भाव दीजिए और जब मैं रास्ता भूल जाऊं बप्पा तो सही रास्ता पहचानने की बुद्धि दीजिए। दादी पास ही खड़ी थी, तभी उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब तुमने गणेश चतुर्थी का असली अर्थ समझ लिया है। आरव ने पूछा, कैसे, वो क्या है दादी? तभी दादी बोली, बप्पा की मूर्ति घर में स्थापित करना सुंदर परंपरा है, लेकिन उनके गुणों को अपने व्यवहार में स्थापित करना उससे भी बड़ी पूजा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आरव की। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है दोस्तों कि ये कहानी एक युवा की नहीं है, ये हम सभी के लिए एक संदेश है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं, बड़े कान कहते हैं अच्छी अच्छी बातों को सुनो, छोटी आंखें कहती है अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, बड़ा मस्तक कहता है कि बड़ा सोचो, सुंड कहती है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो, बड़ा पेट कहता है जीवन के अनुभवों को धीरे से स्वीकारो, मूषक हमें याद दिलाता है कि छोटी से छोटी शुरुआत भी महत्वपूर्ण होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन जीवन के हर विघ्न को हटाने के लिए हमें भी प्रयास करने पड़ते हैं। तो साथियों, आज हमारे सामने अनेक सारी चुनौतियां हैं, करियर की चिंता है, पढ़ाई का दबाव है, प्रतियोगिता है, समय की कमी है, डिजिटल दुनिया का आकर्षण और असफलता का डर। लेकिन याद रखना है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा हौसला कितना बड़ा है। अगर लक्ष्य स्पष्ट है, सोच सकारात्मक है और कदम लगातार आगे बढ़ते रहें तो कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं। तो साथियों, इस गणेश चतुर्थी केवल ये मत कहिए कि गणपति बप्पा मोरिया, इसके साथ ये भी कहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा या निभाऊंगी। इस बार बप्पा से केवल सफलता मत मांगिए, सफल होने की मेहनत करने का संकल्प लीजिए। केवल ज्ञान मत मांगिए, ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करने का संकल्प लीजिए। केवल बाधाएं दूर करने की प्रार्थना मत कीजिए, बाधाओं से लड़ने का साहस भी रखिए और केवल अपने लिए आगे बढ़ने की इच्छा मत रखिए, अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि श्रोताओं, असली सफलता वही है जिसमें हमारी प्रगति के साथ समाज की भी प्रगति जुड़ी होती है। तो श्रोताओं, आज की कहानी हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है, बप्पा की सच्ची पूजा फूलों से नहीं, अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से होती है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी अपने भीतर के आलस्य पर विजय पाने का संकल्प लें, अपने सपनों को दिशा दें, अपने समय का सम्मान करें, माता पिता और गुरुजनों का आदर करें, पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएं और हर दिन खुद से एक सवाल पूछें कि आज मैंने अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या किया। याद रखिए, संकल्प छोटा हो सकता है, शुरुआत छोटी हो सकती है, कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन यदि इरादे मजबूत हों तो यही छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसी विश्वास के साथ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम कथा कहानी।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई, वो कहानी और उससे जुड़ी जो बातें थी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम से जाती हूँ, पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहूंगी ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वाकर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा अपड़े, अपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा,
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे से लावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूँ बच्चों बात नन्हे दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। ये कहानियाँ तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि बच्चों, गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बच्चों, पहली कहानी है हमारी नन्ना दीपक और सच्चाई की जीत। जी हाँ बच्चों, एक समय की बात है, पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। दीपक बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान अमीर या गरीब अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने अच्छे चरित्र से बनता है। बच्चों, दीपक रोज सुबह उठता, माता पिता की मदद करता, स्कूल जाता और शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता। दीपक पढ़ाई में अच्छा था और सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पूरे गांव में लोग उसे अच्छे व्यवहार के कारण बहुत पसंद करते थे। एक दिन बच्चों, स्कूल से घर लौटते समय दीपक को रास्ते में एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने उसे उठाकर देखा, बटुए में बहुत सारे पैसे थे, कुछ जरूरी कागज थे और एक पहचान पत्र भी था। उसके दोस्त मोहन ने कहा, दीपक, इतने सारे पैसे, चलो इससे खिलौना और मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। दीपक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में नए जूते और स्कूल का बैग खरीदने की इच्छा आई, लेकिन बच्चों, तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उसने अपने दोस्त से कहा, नहीं मोहन, यह पैसा हमारा नहीं है, जिसने इसे खोया होगा वह बहुत परेशान होगा, हमें इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। दोनों बच्चे पहचान पत्र में लिखे उस पते के अनुसार उस व्यक्ति को खोजने निकल पड़े। काफी देर पूछताछ के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचे। जैसे ही बुजुर्ग ने अपना बटवा देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं पूरे दिन से इसे ढूंढ रहा था, इसमें मेरी दवाइयों के पैसे और कुछ जरूरी कागज थे, अगर यह नहीं मिलता तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती। बुजुर्ग ने खुशी खुशी दीपक को इनाम देना चाहा, लेकिन बच्चों, दीपक ने विनम्रता से कहा, दादाजी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो केवल आपकी चीज आपको लौटाई है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने मुझे केवल मेरा बटवा नहीं लौटाया बल्कि मेरा विश्वास भी लौटा दिया है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच ने अगले दिन ग्राम सभा में दीपक को बुलाया, सबके सामने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे सम्मान पत्र भी दिया गया। स्कूल में भी प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को दीपक की कहानी सुनाई और कहा, बच्चों, शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, अच्छे संस्कार भी सबसे बड़ी शिक्षा है। उस दिन के बाद बच्चों, गांव के बच्चे दीपक को अपना आदर्श मानने लगे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और दूसरों की चीज उठाने से बचने लगे। अगर किसी को रास्ते में कुछ सामान मिलता तो वह उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करते। कुछ महीनों बाद गांव में तेज बारिश हुई, कई परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दीपक और उसके दोस्त ने मिलकर लोगों की मदद की, किसी के घर राशन पहुंचाया, किसी के लिए दवा लाई तो किसी के बच्चों की देखभाल की। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस बच्चे के मन में ईमानदारी होती है उसके मन में सेवा का भाव भी अपने आप ही आ जाता है। बच्चों, समय बीतता गया, दीपक बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर एक शिक्षक बना। वह अपने विद्यालय में बच्चों को हमेशा यही सिखाता कि अपने जीवन में धन से बड़ा चरित्र होता है। वह कहता, अगर आपके पास सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत है तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, पुलिस अधिकारी और शिक्षक बने। लेकिन बच्चों, सभी के मन में दीपक की एक बात हमेशा याद रही, गलत रास्ता आसान जरूर हो सकता है, लेकिन सही रास्ता ही जीवन को सम्मान देता है। आज भी बच्चों, उस गांव में जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो हमारे दीपक की सीख का असर है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सही काम करने से आत्मविश्वास और सम्मान दोनों मिलते हैं। अच्छे संस्कार जीवन भर बच्चों हमारे साथ रहते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। साथ ही बच्चों,
सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। एक अच्छे बच्चे का व्यवहार पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। और जैसा कि बच्चों गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब यही मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नन्हा अर्जुन और दया का पेड़। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका दयालु स्वभाव था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते थे और गांव के बच्चे उसे अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। अर्जुन के घर के सामने एक बहुत ही पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ बच्चों हर गर्मी में मीठे आमों से लज जाता था। गांव के बच्चे उसकी छाया में खेलते थे, पक्षी उस पर घोंसला बनाते थे और राहगीर उसकी ठंडी छाओं में बैठकर आराम करते थे। एक दिन गांव में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अगर इस पेड़ को काट दिया जाए तो यह सबसे बड़ी दुकान बनाई जा सकती है, इससे बहुत पैसा मिलेगा। गांव के कुछ लोग उनकी बात मानने लगे, लेकिन अर्जुन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा अगर पेड़ कट गया तो पक्षी कहाँ रहेंगे, राहगीरों को छाया कौन देगा, गर्मियों में बच्चों को ठंडी जगह कहाँ मिलेगी। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया, सबने मिलकर पेड़ के नीचे सफाई की, उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगाए और एक तख्ती पर लिखा पेड़ हमारी सांस है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। अर्जुन ने सबको समझाया कि पेड़ केवल फल नहीं देता बल्कि शुद्ध हवा, छाया और जीवन भी देता है। इसी बीच बच्चों गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी, कई छोटे पौधे सूख गए। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें पानी देता। उसने अपने दोस्तों से भी कहा कि हर बच्चा एक पौधे की जिम्मेदारी ले। कुछ दिनों बाद गांव में एक घायल तोता मिला, उसके पंख में चोट लगी थी। बच्चे उसे देखकर डर गए, लेकिन अर्जुन उसे धीरे से घर ले आया। उसने उसके मरहम पट्टी की, उसे दाना दिया और पानी दिया। लगभग बच्चों 2 सप्ताह बाद तोता पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर से खुले आसमान में उड़ गया। बच्चों यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आया कि छोटे छोटे दयालु काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुछ समय बाद तेज आंधी आई, गांव के कई पेड़ गिर गए, लेकिन वही पुराना आम का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। उसने कई लोगों को गिरती शाखाओं और तेज धूप से बचाया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि उन्होंने इसे काट दिया होता तो आज यह सब संभव नहीं होता। बच्चों फिर ग्राम सभा बुलाई गई। सरपंच ने कहा आज से हमारे गांव में बिना कारण के कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हर परिवार हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएगा। उसी दिन अर्जुन को पूरे गांव के सामने सम्मानित किया गया बच्चों, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा सम्मान मेरा नहीं, इस पेड़ का है, इसने हमें जीना सिखाया है। उसकी यह बात सभी के दिलों को छू गई। अब गांव के बच्चे हर रविवार को मिलकर पौधे लगाने लगे, उनकी देखभाल करते और पक्षियों के लिए दाना पानी रखते। कुछ वर्षों बाद वह गांव दूर दूर तक हरा भरा गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां आकर देखते कि छोटे बच्चों ने अपने अच्छे कामों से पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। जब भी कोई नया बच्चा गांव में आता उसे सबसे पहले उस पुराने आम के पेड़ के पास ले जाया जाता और अर्जुन की कहानी सुनाई जाती। बच्चे प्रेरित होकर कहते हम भी प्रकृति की रक्षा करेंगे और सभी जीवों से प्रेम करेंगे। आज भी बच्चों उस गांव में हर वर्ष वृक्ष मित्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन बच्चे पौधे लगाते हैं, पेड़ों की सफाई करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। दया और करुणा हर जीव के प्रति होनी चाहिए। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सच्ची सफलता बच्चों दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटने में है। एक जागरूक बच्चा पूरे गांव की सोच बदल सकता है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपने दीदी मनीषा दीदी के साथ।

0: गीत के बाद श्रोता साथियों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में जब भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं तो एक नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है। तो आज भी हमारे साथ कार्यक्रम में समुदाय की एक महिला जुड़ेंगी जो कि अपने जीवन के संघर्षों से निकलकर खुद भी अपने जीवन में कई परिवर्तन ला रही है और दूसरी महिलाओं को भी उसके लिए प्रेरित कर रही है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम में हमारी शख्सियत की बातों को। नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका क्या नाम है?
1: मेरा नाम टीना ग्रेशिया।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आप आज हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता?
1: मेरा बचपन इस कदर से बीता कि जब हम छोटी थी तब छोटी उम्र से ही मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की 10वीं 12वीं तक, इसके बाद 12 की, इसके बाद कॉलेज करते करते कॉलेज फाइनल हुई, इसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं यहाँ पे शादी की तो थोड़ा गरीब परिवार में शादी की थी, लव मैरिज की थी हमने। तो मेरे फैमिली वाले यहाँ करना नहीं चाहते थे, तो मेरे परिवार वालों ने शादी करवा दी। तो यहाँ पे शादी तो की, पढ़ाई तो मैंने बाहर ही की थी, मेरे फैमिली वालों ने वहाँ

0: बाहर से ही पढ़ाई करवाई थी, लेकिन मेरी फैमिली वाले यहाँ इस परिवार वालों के साथ करवाना नहीं चाहते थे, तो इस संघर्ष के साथ शादी की। फिर यहाँ पे इतना मुझे काम करने नहीं आता था, घर का काम करने कुछ भी नहीं आता था, तो फिर धीरे धीरे काम तो यहाँ फैमिली में अब शादी तो की है तो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर घूंघट डालने साड़ी पहनने वो भी नहीं आता था, तो पूरे गांव वाले भी यही कहते थे ये ऐसी औरत को क्यों यहाँ पे लाए, शादी करवा के लाए यहाँ पे, क्योंकि ये तो बाहर की है, बाहर की पढ़ाई करके रखी है उसने, तो अपने गांव में तो ये सूट नहीं हो रही है। तो भी मैंने ड्रेस ही पहना, यहाँ गांव में भी ड्रेस ही पहना, ताकि मेरे जैसी भी कोई लड़कियां हैं, कोई भी महिला है, वो मेरे को देख के वो भी सीखे। और घूंघट डालना भी मेरे को पसंद नहीं था, तो घूंघट भी मैंने नहीं डाला, ताकि वो भी महिला मुझे देख के वो भी सीखे, वो भी जागरूक हुए। यूं करके मैंने भले कितने भी लोगों ने मुझे कुछ भी बोला, लेकिन मैंने उनका सुना नहीं, किसी का भी, मेरे सास ससुर का है, मेरे हस्बैंड का भी, जेठ जेठानी बहुत मुझे ताने मारते थे, लेकिन मैंने उनका किसी का भी नहीं सुना। और पढ़ाई भी मैंने नहीं छोड़ी, और काम करने के लिए भी मुझे बहुत ताने मारते थे, तो भी धीरे धीरे काम नहीं आता था, तो भी मैंने धीरे धीरे काम करना सीखा, गोबर निकाला घर से, घर से फिर साथ साथ में पढ़ाई भी, फिर धीरे धीरे ये तो इतना ज्यादा काम नहीं कर रही खेती में भी, तो भी मैंने धीरे धीरे लिंदाई का वो सारा काम करना सीखा धीरे धीरे। फिर उन लोगों ने धीरे धीरे हमको अलग कर दिया, फिर हमने साथ में पढ़ाई भी की, पढ़ाई करने के बाद बीएड की मैंने, बीएड के साथ साथ फिर स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, और मेरे हस्बैंड को भी मैंने पढ़ाया, एनकॉम बीकॉम करवाया, वो भी टीचर स्कूल में ज्वाइनिंग ली टीचर में, हम दोनों ने प्राइवेट स्कूलों में ज्वाइनिंग लेके पढ़ाई अपने खुद के खर्चे के लिए वो किया, फिर बच्चे हो गए दो। फिर धीरे धीरे हम गांव में संगठन की बैठक हो रही थी, दिनेश जी सर आए तो हम एक बार अमूली दीदी के साथ संगठन की बैठक में गए, वहाँ पे अमूली दीदी ने बताया कि वहाँ पे अच्छे सी बातें बताते, एक बार तो बैठक में आओ ही, तो मैं अमूली दीदी के साथ गई वहाँ संगठन की बैठक में। फिर धीरे धीरे ये सारी बातें मैंने सुनी, सच्ची खेती, सच्चा बचपना, जो भी सारे ने हक के अधिकार के बारे में बताया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे जैसे बैठक ही अपने संगठन की होती थी, तो फिर मैं भी संगठन की बैठक में जाने लगी, तो धीरे धीरे अपने हक अधिकार पे बात करते, तो फिर गांव गांव में, फिर धीरे धीरे फिर थाने में, या अपने महिलाएं बहुत अंदर घर के अंदर चुप के रहती, जो भी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा है, प्लाइन में जाते वक्त कोई भी हिंसा होती है, वो महिला बताना नहीं चाहती थी, अंदर ने अंदर घूट रही थी वो महिला। फिर मैं भी यही सोचती थी कि चलो इन महिलाओं के लिए अपन तो कुछ तो कर सके, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ तो क्यों नहीं हम महिला के लिए हम खड़े हो सके, और घरों में जाके क्यों नहीं उनसे बातचीत करे। फिर मैंने धीरे धीरे उनके साथ बैठक करते करते धीरे धीरे जो भी महिलाओं के केस आते थे वो थाने तक भी मैं लेके गई, 150 केस मेरे पास ऐसे आ चुके हैं, तो केस कोर्ट तक भी मैंने न्याय दिलवाया, उनका काउंसलिंग करवाया महिलाओं का, जो भी उनके साथ घरेलू हिंसा होती, किशोरियों के बीच में जो भी हिंसा होती, तो सारा उन महिलाओं को थाने के साथ भी और थानेदार के साथ भी कोर्ट में भी बयान के सामने भी वहाँ तक भी उनको न्याय दिलाया मैंने महिलाओं को।
1: तो जैसा कि आपका जो जीवन का सफर है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, बचपन के बाद जैसा कि आपने बताया कि आपकी लव मैरिज हुई है, फिर ससुराल में बहुत सारी चीजें आपको झेलने को मिली, उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई को फिर भी जारी रखा, आपने आपके हस्बैंड को पढ़ाया, और अभी भी आप अपने जो जीवन के संघर्ष हैं उससे गुजर ही रही हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बीएड करी है, तो आपके मन में कभी ये नहीं हुआ कि मैं कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करूं, या आपका सामाजिक सेवा में ही मन था इसलिए आप इस संस्था से जुड़ी हुई रही?
0: मेरा मन तो हुआ गवर्नमेंट, मेरे फैमिली वाले अभी भी मेरे मम्मी पापा, क्योंकि वहाँ वाले सारे गवर्नमेंट जॉब है भाई वगैरह, तो भी कहते कि गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रही है, तो मैं उसकी भी अभी साथ में तैयारी कर रही हूँ, और साथ में ही मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगी तो जो भी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा उनका कौन करेगा, अगर गवर्नमेंट जॉब में भी मिल जाएंगे तो उसमें इतना समय नहीं बिता पाएंगे, तो इसे बेस्ट है अभी इसके साथ साथ प्राइवेट जॉब करते करते फिर साथ में इन लोगों के बीच में उनको भी उनके हक अधिकार के बारे में बताऊं, और उनको जागरूक करूँ।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप महिलाओं को लेकर कार्य करती हैं, महिलाओं के हक के लिए बातें करती हैं, तो कौन कौन से अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं और महिलाएं किस तरीके से उनको लेकर अभी के समय में जागरूक हुई हैं या अभी भी कुछ महिलाएं वंचित हैं?
0: अभी भी कुछ महिला वंचित हैं।
1: तो उनको लेकर आपका क्या कहना है, कैसे आप उन्हें और इन सारी चीज़ों को लेकर जागरूक करना चाहेंगी?
0: इन महिलाओं को उनके पास अपने गांव-गांव में जाके बैठके करके उनको महिलाओं के हक अधिकार, उनको धाराएं, उनके जो भी महिला उनके बारे में जैसे उनके पास हिंसा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उनके अधीन में रह के उनके अनुसार वो बात बताए उनको, तो उनको उन बातों से जागरूक करें।
1: कौन सी ऐसी समस्या है जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है महिलाओं में?
0: घरेलू हिंसा, बलात्कार है, अभी फिलहाल तो बलात्कार और घरेलू हिंसा हो रही है।
1: तो इन सारी चीजों के लेकर जो आपने बताया कि आपने कितने केस पूरे करे हैं?
0: 110
1: केस आपके पास आए इन सारी चीजों को लेकर, तो उन महिलाओं को न्याय मिला?
0: हाँ मिला।
1: मिला है, तो फिर उन महिला का फिर बाद में क्या फ्यूचर रहता है, कैसे वो अपने जीवन को बदलती है बाद में?
0: धीरे धीरे वो महिला, अभी मैं फ्लॉप लेने गई थी कई महिलाओं के पास, तो वो बताती कि धीरे धीरे दीदी हम अभी जैसे आपने हमको समझाया और न्याय दिलाया, अब धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने वो इतना हमको छेड़छाड़ी नहीं कर रहे, अब हम आराम से हम अच्छे से अपना परिवार के साथ हम रह रहे दोनों।
1: तो ये जो हिंसा होती है उसका कारण क्या है?
0: दारू पीना है और प्लाइन में जाते वहाँ पर भी कुछ भी छेड़छाड़ी होती है।
1: तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए आपके अनुभव के अनुसार क्या समाधान हो सकता है?
0: इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए अनुभव तो यही हो सकता है कि जो जिन बातों में वंचित हो उनको उन बातों को इन महिलाओं के पास जाए, इन बातें सारी महिलाएं जो भी है सारा वो महिलाएं बाहर आए और जागरूक हुए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है और महिला जागरूक होगी तो इन सारी चीजों का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो आपके जीवन में अभी आप क्या कर रही हैं और आप किस मुकाम को प्राप्त करना चाहती हैं और दूसरी महिलाओं को क्या कहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी महिला जागरूक होए और अपने आगे आए।
1: आप अपने जीवन में क्या करना चाहती हैं अब?
0: मेरे जीवन में यही करना चाहती हूँ कि सारी महिला जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही हो उनसे डरे नहीं और आगे आए, अपने जो भी होए वो आगे जहाँ तक जाना है वहाँ तक वो महिला खुद जाए और खुद जागरूक होए।
1: बिल्कुल, तो समाज में ऐसा क्या परिवर्तन आप लाना चाहती है अभी के समय में जो अभी तक भी उसको लेकर आवाज नहीं उठी है?
0: अभी तक महिला घर से बाहर नहीं निकल रही है, तो महिला बाहर निकले, घर से बाहर निकले।
1: तो आपके क्षेत्र में महिलाएं अभी भी घर के अंदर रहती हैं, घूंघट निकालती है, ये सारी चीजें हो रही है ऐसा?
0: हाँ हो रही है अभी।
1: तो आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करती हैं उनके लिए?
0: उनके लिए मैं ये प्रयास करती कि वो भी महिलाएं बाहर निकले और वो भी अपनी तरह अपने मन मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार रहे।
1: आपके जीवन का कोई ऐसा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ऐसी चुनौती जिसमें आपको बहुत हताशा निराशा हुई लेकिन आपने फिर भी अपने आप को और अपने परिवार को संभाला?
0: घूंघट डालना, घर से बाहर निकलने के लिए मना करते थे।
1: आपके हस्बैंड ने आपको कैसे सपोर्ट किया?
0: क्योंकि जो भी कर रही वो अच्छे के लिए कर रही और महिलाओं के लिए कर रही है, जो भी कर रही वो अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कर रही है ताकि वो भी उसको देख के और भी महिला सीखे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको आपके हस्बैंड का भी सहयोग मिला और किस तरीके से आप जो कार्य कर रही थी वो महिलाओं के लिए ही कर रही थी, तो अंत में आप जो महिलाएं आपका कार्यक्रम सुन रही हैं, जो भी व्यक्ति आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि और भी महिला जागरूक हुए मेरी तरह, अपने हक अधिकार पे आगे आए और किसी से डरे नहीं और आगे आए।
1: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे मेहमान जुड़े हुए थे जिनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, आशा करते हैं कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुगाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। श्रोता साथियों, गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव के लिए किसी बड़े पद या ताकत की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति का छोटा सा सही कदम भी समाज में बड़ी सोच की शुरुआत कर सकता है। इसलिए शुरुआत हमेशा अपने आप से करें।

दर्शन पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि कशिश, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमने नारी प्रकरण के बारे में जाना था,
1: जी।
0: यही आज रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारे साथ प्रकरण जुड़ रहा है राष्ट्रपति।
1: बिल्कुल,
0: जानेंगे श्रोता साथियों राष्ट्रपति प्रकरण में ढेर सारी बातों को। और अगर शुरुआत करें तो श्रोता साथियों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपति कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिसने जीवन में सत्ता का कोई पद नहीं संभाला, न ऐसी कोई आकांक्षा रखी। उन्हें उनके साथ तीव्र मतभेद रखने वाले नेताजी ने उनके जीवन में ही राष्ट्रपिता कहा और उनके देहांत के बाद राष्ट्र की संसद ने इस पद को स्वीकार कर लिया।
1: बिल्कुल,
0: सामान्यतः गुलामी से मुक्त होने वाले राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा कोई पद ग्रहण नहीं किया था। यदि उन्होंने ऐसे पद की इच्छा की होती तो उन्हें निश्चित ही यह पद मिल गया होता।
1: जी बिल्कुल,
0: उन्होंने उसकी इच्छा नहीं की, इसे लेकर भी किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए तो यह स्वाभाविक था कि ऐसा लोगों ने मान लिया था कि यह कहना संगत होगा कि महात्मा शब्द भी उन्हें बोझ लगता था। तीन तीन दशकों तक कशिश उन्हें इसे झेलना पड़ा था। उनके सौभाग्य से और देश के दुर्भाग्य से गांधी जी को राष्ट्रपिता का बोझ झेलना नहीं पड़ा।
1: बिल्कुल,
0: सौभाग्य इसलिए कहा कि जिस राष्ट्र का उन्हें पिता कहा गया था उसका विभाजन हो चुका था और दोनों देश भड़ भड़ जल रहे थे। देश का दुर्भाग्य इसलिए कहा कि देश इसके बिना पिता की छत्र छाया से विहीन हो गया था।
1: जी हाँ साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी के साथ बहुत मतभेद थे। मुख्य मतभेद उनकी कार्य पद्धति को लेकर था। देश को स्वतंत्र करने के लिए दूसरे देश की मदद मिलती हो तो ले लेनी चाहिए, ऐसा सुभाष बाबू मानते थे। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी की मान्यता ये थी कि दूसरे देश की मदद से अगर स्वतंत्रता आती है तो एक देश की गुलामी की बजाय दूसरे देश की गुलामी आ सकती है। इसी हिंसा अहिंसा के मतभेद के उपरांत यह दूसरा मतभेद था। गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच अन्य मतभेद भी थे, इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा होगा?
0: बिल्कुल,
1: ये प्रश्न है श्रोता साथियों, और इसका कारण ये है कि वे राष्ट्रभक्त थे और गांधी जी को उन्होंने राष्ट्र का निर्माण करते हुए देखा व जाना था। गांधी जी राष्ट्र के निर्माता थे। देश अपनी भौगोलिक व राजनीतिक सीमा से बनता है और सिर्फ अपने इतिहास से नहीं बल्कि अपनी भावनात्मक एकता से बनता है। कई देशों को उनकी अपनी भाषा भावनात्मक एकता देती है। बांग्लादेश का उदाहरण हमारे पड़ोस में ही है। कई देश धर्म की एकता को अपने राष्ट्र की बुनियाद बताते हैं। पाकिस्तान इसका उदाहरण है अंजलि जी।
0: जी हाँ,
1: कई देश को वहाँ के राजा के कारण राष्ट्रत्व मिलता है। नेपाल इसका उदाहरण है। हमारे देश में अनेक भाषाएं थी, हमारे देश को राष्ट्रत्व मिला इसके भावनात्मक एकता से। साथियों, यह देश गुलाम है, इसे स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। यह बात कहने वाले गांधी जी कोई पहले व्यक्ति नहीं थे।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी के जितना ही स्वतंत्रता से प्रेम उनसे पहले बहुतों को था और गांधी जी के समय में भी बहुतों को था। गांधी जी की ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण स्वतंत्र देश की संसद ने उन्हीं को ही राष्ट्रपिता कहा? वह विशेषता ये थी कि गांधी जी ने इतने विशाल और इतनी विविधता वाले देश को एक भावना से जोड़ा और गढ़ा था। उन्होंने अलग अलग पुष्प एक सूत्र में बांध कर सिर्फ माला ही नहीं बनाई बल्कि उसका एक गुलदस्ता बनाया था। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस राष्ट्र को मानवों का महासागर कहा था। सागर जल में जिस प्रकार सारी नदियां मिलकर एक रूप हो जाती है, वैसे ही यही सारी विभिन्नताएं एकता में समा जाती है।
0: यही कशिश बात करे, गांधी जी का पुरुषार्थ इस देश को ऐसी ही एकता प्रदान करने का था, इसी से सुभाष बाबू ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा।
1: बिल्कुल,
0: उनके इस शब्द ने समग्र देश की आवाज को प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी ने एक एक ईंट लगाकर राष्ट्र के भवन का निर्माण किया था। श्रोता साथियों, इस पर हम थोड़ा सविस्तार विचार करेंगे कि अहमदाबाद के सर्किट हाउस में जब विशेष अदालत में मुकदमा चला तो न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी से नाम धाम पूछ कर उनका धंधा पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में गांधी जी देशभक्ति या समाज सेवा या ऐसा ही कुछ कह सकते थे। जैसा कि अनेक लोग बताते हैं कि गांधी जी ने उत्तर में कहा किसान और बुनकर, इस प्रकार उन्होंने दो विशाल वर्गों के साथ अपनी आत्मीयता व्यक्त की।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी का यह उत्तर देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया और अवश्य ही असंख्य किसानों और बुनकरों के हृदय में इसने प्रतिघोष किया होगा कि यह हमारे बीच का ही आदमी है। वे लोग यह बात भी देखकर समझ गए होंगे कि यह उत्तर कोई अखबार में प्रचार करने के लिए नहीं दिया गया था। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में बैरिस्ट्री छोड़कर फिनिक्स में छापे खाने में अक्सर जोड़ने के साथ साथ खेती का काम किया था।
1: बिल्कुल,
0: साबरमती में उन्होंने हथकरघे पर खादी बुनी थी। प्रत्यक्ष इस काम के साथ उनके दिल के तार भी किसानों और बुनकरों के साथ जुड़ते जाते थे। संत कबीर जब करघे पर बैठते तब उनके हृदय के तार जैसे अनेक साहेब यानी कि परमात्मा के साथ जुड़ते जाते थे, वैसे गांधी जी के प्रत्येक काम में सत्य की खोज थी। तभी तो उन्होंने अत्यंत सहजता से कहा किसान और बुनकर। देश के किसान और बुनकर देख रहे थे कि गांधी जी का निरंतर प्रयास भी उनकी तरह मेहनत और गरीबी का जीवन जीना था।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी का न्यायाधीश को दिया गया उत्तर अकृत्रिम था। तभी तो वे एकात्मक साधक थे। वे देख रहे थे कि गांधी जी के आश्रम में खेती भी थी और बुनाई का काम भी था। उनके आश्रम में किसान भी थे और बुनकर भी थे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में राष्ट्रपिता प्रकरण चल ही रहा है और इसी प्रकरण से जुड़ी और भी बातें हैं जो कार्यक्रम में आगे हमारी बनी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे कि गांधी जी के आश्रम में किसान भी थे और बुनकर भी थे। यही साथियों, अगर बातचीत को आगे बढ़ाएं तो गरीबों या सामान्य जनता और अनपीढ़ी समझी जाने वाली जनता के साथ तादात्म्य साधने का गांधी जी का दूसरा उपाय मातृभाषा विषयक उनके आग्रह में प्रकट था। वे स्वयं तो गुजरात में गुजराती और गुजरात से बाहर हिंदी में बोलते या भाषण देते थे। जिन सभाओं को उन्होंने बुलाया होता उनमें दूसरे नेताओं से भी ऐसा ही करने का आग्रह रखते थे।
1: जी जी,
0: गांधी जी से पहले अंजलि जी नेताओं में अंग्रेजी में भाषण देने का रिवाज था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को एक बार बंगाल के गांव में बंगला में बोलना पड़ा। इस बात का स्वयं उन्हें इतना अचरज था कि अपनी आत्मकथा में इस बारे में एक प्रकरण लिख डाला उन्होंने कि मैं बंगला में बोला। गोधरा की राजनीतिक परिषद में गांधी जी जिन्ना से गुजराती में भाषण दिलाने में सफल हुए थे। ये सुनकर सरोजनी नायडू ने गांधी जी को लिखा कि आपने हिंदू मुस्लिम एकता से भी मुश्किल काम संपन्न किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हिंद आए तब वे गुजराती से अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लिखते थे, परंतु उन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथ गुजराती में ही लिखे। गुजराती भाषा के प्रति आग्रह के कारण वे गुजरात की सामान्य जनता के हृदय में प्रवेश कर सके अंजलि जी। फिर उनकी बोलने व लिखने की भाषा बहुत सरल थी, इससे वे अनपढ़ लोगों तक भी पहुंच सके। दूसरी तरफ उन्होंने गुजराती साहित्य पर भी ऐसा प्रभाव डाला कि उसके इतिहास के एक समग्र काल को गांधी युग भी कहा गया। यहाँ हम खास तौर पर बल देते हुए कहना चाहेंगे दोस्तों कि गांधी जी ने मातृभाषा के आग्रह के कारण देश की सामान्य जनता में एकता की भावना पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं स्वदेश लौटने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस संस्था को अपना माध्यम बनाकर काम किया था। अपने व्यवहार में भी उन्होंने प्रांतों में मातृभाषा का और प्रांत प्रांत के बीच संबंध के समय हिंदी भाषा के व्यवहार का भी आग्रह रखा था।
1: बिल्कुल, यही बात करें तो श्रोता साथियों, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्राचरणी सभा आदि की प्रवृत्तियों में वे रुचि लेते और दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा के तो वे जनक भी थे। दक्षिण में हिंदी का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास को विशेष रूप से भेजा था। संपूर्ण देश में अहिंदी भाषियों को राष्ट्रभाषा सिखाने में गांधी जी की प्रेरणा ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी।
0: बिल्कुल,
1: राष्ट्रीय एकात्मकता के निर्णय के निर्माण की यह भी एक ईट थी। यहाँ एक व्यक्तिगत किस्सा उद्घृत करने की अनुमति लेता हूँ कि एक प्रसंग में गांधी जी ने मुझे पूछा कि भविष्य में तुम क्या करोगे। मैंने उनसे कहा कि आपके कई साथी राजनीति कर रहे हैं तो दूसरे साथी रचनात्मक कार्य में संलग्न है, मुझे इन दोनों के मध्य सेतु बनना है। गांधी जी ने क्षण भर भी विलंब किए बिना मुझे इसका पाठ्यक्रम सुझा दिया। यह तो बहुत आसान है, तू यूं कर खादी के काम की समस्त प्रक्रियाओं में प्रवीण बन जा और देश की तमाम भाषाएं सीख ले।
0: बिल्कुल साथियों, गांधी जी का यह सरल पाठ्यक्रम अलबत्ता में तब से 60 वर्ष बाद भी पूरा नहीं कर सका, परंतु इस पाठ्यक्रम में देश की एकात्मकता की कुंजी भी थी। ये समझ पाना बहुत कठिन नहीं है साथियों, देश को एक जागृत राष्ट्र बनाने में गांधी जी ने एक दूसरा भी पुरुषार्थ किया था। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, यदि महिलाएं जागरूक न हो तो आधा देश नींद में ही रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसके उपरांत देश के बालकों में भी चेतना लाने का काम मुख्य रूप से उनकी माताएं ही किया करती हैं। महिलाओं को राष्ट्र के प्रति जागृत करने का जितना काम गांधी जी ने किया उतना शायद ही किसी दूसरे ने किया होगा। अंजलि जी, नारी शिक्षण के महान आचार्य महर्षि कर्वे ने कहा था कि नारी जागृति का जितना काम मैंने आधी सदी में किया उतना गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: और महिलाओं में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ना गांधी जी के राष्ट्र निर्माण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग था।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि विशेष कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अगले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी इसी प्रकरण में मुलाकात फिर से रहेगी नई बातों के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तब तक के लिए श्रोता साथियों दीजिए अनुमति कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन से जाने की आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
4: नाना अंजलि बूंद, हूँ था का
3: અરે જાગૃતિ બોન, આપણી જે નદી હે એ હુકી જાયગા, ખેતર બંજર થઈ જાયગા, ને આપણું જીવન જે હે એ ભી રૂકી જાગા. ઓ અંજલિ બોન, એટલે જ મન કે હે કે પાણી તો કાલ હે, પાણી થકી જ આપણું જીવન હે. હોવે જ

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं रागी का चिल्ला और रागी का हलवा हम कैसे बनाएं। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो जैसा कि मैम आप समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ती हैं और श्रोता साथियों को ढेर सारी ऐसी जानकारियों से अवगत करवाती हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आज भी हमारे कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जुड़ेगा। आज हम जानेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में कि कौन से ऐसे परंपरागत व्यंजन हैं जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और फिर से उन्हें हमें हमारे जीवन में अपनाने की जरूरत है। तो आज कार्यक्रम के माध्यम से आप मैम कौन सी ऐसी व्यंजन विधि के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताने जा रही हैं जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है?
1: रागी के बारे में हम आज बात करेंगे। रागी एक परंपरागत खाद्य पदार्थ है हमारे यहाँ पे।
0: बिल्कुल,
1: आदिवासी क्षेत्र में सदियों से होता है लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होने लगा है। तो आज हम रागी के बारे में बात करेंगे ताकि विलुप्ति की कगार से जो रागी है उसको हम फिर से अपनी रसोई का हिस्सा बना सके और फिर से हम हमारी थाली का हिस्सा बना के और पौष्टिकता का आहार सेवन करने में उसका मदद ले सके।
0: बिल्कुल, आज हम रागी से क्या बनाने वाले हैं?
1: देखो अपन दो डिश की बात करेंगे आज, है ना। तो एक नमकीन डिश और एक मीठी डिश। तो अभी हम पहले मीठे से शुरू करते हैं, कोई भी अच्छा काम हमें मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रागी का हलवा कैसे बनता है इसके बारे में बताना चाहूंगी ताकि हमारी आदिवासी बहनें को सुने और सीखें और अपनी रसोई में अच्छा हलवा बना के और अपने परिवार को खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो मैम इसके लिए हमें सामग्री क्या चाहिए होगी?
1: इसके लिए हम जो सामग्री काम में लेने वाले हैं ना वो हमारी रसोई में ही निकल जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सबसे पहले चार लोगों के लिए तैयार करते हैं आज रागी का हलवा। सीखते हैं कि चार लोगों के लिए अगर हमें रागी का हलवा तैयार करना है तो उसमें हमें किस तरह से सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें रागी का आटा लेना होगा। तो सभी बहनों की रसोई में कटोरी तो होती ही है, एक कटोरी रागी का आटा लेना होगा।
0: बिल्कुल,
1: और ये हलवा जो हम बनाएंगे ये घी में भी बनाया जा सकता है और सरसों के तेल में भी बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें चार चम्मच तेल या घी लेना होगा इसके लिए। और तीसरी चीज जो होगी इसमें गुड़ को कद्दूकस किया हुआ होगा, तो ये पूरी कटोरी भर के नहीं चाहिए हमको, तीसरा हिस्सा जो होता है मतलब आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा कटोरी हम गुड़ लेंगे। और हम चाहें तो स्वाद के अनुसार इसको एक कटोरी भी ले सकते हैं अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो।
0: बिल्कुल,
1: एक और चीज जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में होती है महुआ। महुआ का भी सूखा गुड़ जैसा तैयार किया हुआ कुछ होता है, उसे भी हम इसी जगह उसमें मिला सकते हैं गुड़ की बजाय।
0: बिल्कुल,
1: फिर यहाँ पे हमें तीन कटोरी पानी लेना होगा और अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम इलायची पाउडर ले लेंगे आधा चम्मच और इसमें हम इसको और ज्यादा पौष्टिकता लाने के लिए हम हमारे पास में उपलब्ध सामग्री में से तेल ले सकते हैं। भुनी हुई मूंगफली या चिरौंजी जो होती है कुटी हुई उनको भी अपन अपने स्वाद के अनुसार दो चम्मच या तीन चम्मच इसमें ऊपर से हलवा तैयार होने के बाद में भी डाल सकते हैं और बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है उस दौरान भी इसे काम में ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने हमें बताया कि हमें चार लोगों के लिए अगर रागी का हलवा बनाना है तो क्या क्या सामग्री चाहिए, यही इसे बनाने की शुरुआत हमें कैसे करनी है?
1: और शुरुआत की अगर हम बात करें तो देखो हम इसको गैस के चूल्हे पे भी बना सकते हैं और हम इसको हमारे जो आदिवासी बहनें अपने चूल्हे पे काम करती हैं उससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस पे भी बनाया जा सकता है। तो बर्तन का अगर हम बात करें तो कढ़ाई भी काम में ले सकते हैं या मिट्टी के कोई बर्तन में भी इसको बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: सबसे पहले हम इसको जो भी बर्तन में हम बना रहे हैं मैं यही कहना चाहूंगी बहनों से कि चूल्हे पे बनाएं और मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें तो इसका स्वाद चार गुना बढ़ जाएगा। तो बर्तन को हम सबसे पहले चूल्हे पे रखेंगे और उसमें घी या सरसों का तेल जो भी है उसको गर्म करने के लिए उसमें डाल देंगे।
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद में हम जैसे थोड़ा हल्का वो गर्म होता है तो उसे हम रागी का आटा डाल देंगे और उसको धीमी आंच पर सुनहरा होने तक उसको सेकेंगे, और उसको जब हम सेकेंगे ना तो उसमें से खुशबू आने लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: मतलब 4 से 5 मिनट जब हम उसको पलटे से पलटते रहेंगे सेकेंगे धीमी आंच पर तो उसमें से एक खुशबू आने लगेगी, तो खुशबू आने तक हम उसको सेकेंगे। अच्छा, साथ में हम क्या करेंगे किसी दूसरे बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे और उस पानी में फिर हम जो हमारा गुड़ या मऊआ है उसको पूरी तरह भूनने के लिए उसमें डाल देंगे। अब जो हमारा रागी का आटा है जिसे हमने भून लिया था इसको इसमें हम इस मीठे घोल को डाल देंगे।
0: जी जी।
1: और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे गैस पे धीमी आंच पे ताकि गुठली ना बने। इसमें क्या गुठली बनने का डर रहता है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठली बन जाएगी तो स्वाद में भी खराब लगेगी और ठीक से पकेगा भी नहीं वो।
0: बिल्कुल।
1: फिर इस मिश्रण को हम धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये जो बर्तन है जो हमने रखा हुआ है मिट्टी का बर्तन या कढ़ाई वो घी या तेल को छोड़ने ना लगे, तो उसमें चिपकेगा नहीं, धीरे धीरे वो चिपकना बंद हो जाएगा और उस बर्तन को छोड़ देगा। अब गाढ़ा हलवा जैसा बन जाएगा ये ना, लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा इसमें। और जब ये एकदम तैयार हो जाए बर्तन को छोड़ने लगे कढ़ाई को छोड़ने लगे तब हम इसको आंच से नीचे उतार लेंगे और फिर हम इसपे हमारे पास में अगर उपलब्ध है इलायची पाउडर या कुटे हुए तिल मूंगफली या चिरौंजी इनको हम ऊपर से इनके ऊपर डाल के और फिर हम इसको गर्मा गर्म परोस देंगे।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने हमें ये बताया कि किस तरीके से हम रागी का हलवा बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसानी से घर में उपलब्ध सामानों से बन जाता है, तो ये तो आपने हमें बताया कि रागी का हलवा हमें कैसे बनाना है। आगे आप हमें एक और व्यंजन की विधि के बारे में बताने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को आपकी पसंद के एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें। बिल्कुल। तो मैम आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: राजस्थानी गीत सुनाइए आप।
0: बिल्कुल।

0: तो जैसा कि मैम ये आपकी पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत रहा है, और गीत से पहले आपने हमें मीठी चीज यानी कि रागी से किस तरीके से हम हलवा बना सकते हैं उसके बारे में बताया था। अब आप हमें क्या बताने वाली हैं?
1: मैंने सोचा जब एक मीठी डिश हो ही रही है तो क्यों ना अभी हम एक नमकीन डिश की बात करें।
0: बिल्कुल
1: है ना, तो रागी का चीला बनाने की बात करेंगे अभी आगे हम, है ना। ये रागी का चीला जो है ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रही हूँ, मैं तो मैंने हलवा जो बताया वो कोई नई डिश है ना, ये रागी का चीला नई डिश है, दोनों ही सदियों पुरानी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगी है, तो मुझे लगा कि एक बार वापस से हमारी बहनों को याद आए और वो इसको वापस से हमारे साथियों के प्लेट में लाने लगे। तो रागी का चीला जो है वो भी हम चार व्यक्तियों के लिए बनाएंगे।
0: जी जी।
1: इसके लिए हमको जो आवश्यक सामग्री की जरूरत रहेगी उसमें रागी का आटा चाहिए एक कटोरी, और हमारे सबकी रसोई में बेसन भी होता है, बारीक बेसन ना।
0: बिल्कुल।
1: अगर हमारे पास वो उपलब्ध है तो हम दो छोटे चम्मच ले लेंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना बेसन के भी काम चल जाएगा। अभी हम इसमें एक चौथाई कप या एक चौथाई कटोरी पानी का लेंगे, और उससे हम घोल तैयार करने में मदद लेंगे। इसमें हम अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर हम इसमें डाल सकते हैं।
0: जी जी।
1: फिर हम इसमें हरी मिर्च कटी हुई छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डाल देंगे, और हरा धनिया अगर हमने डाल दिया है तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा, तो दो छोटे चम्मच हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी मिला देंगे। इसके साथ में हम इसमें हमारी रसोई में से जीरा, नमक और इसको सेकने के लिए तेल की भी जरूरत रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो आधा चम्मच जीरा लेंगे और चौथाई चम्मच हम नमक लेंगे, और स्वाद के अनुसार भी नमक ले सकते हैं, किसी को थोड़ा नमक ज्यादा खाना होता है, बहनों को पता होता है उनके परिवार में कितना नमक चल जाएगा, तो वो अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक डाल लें। और इसमें तेल की जरूरत पड़ेगी अपन को सेकने के लिए, तो मेरे को लगता है तीन छोटे चम्मच तेल पर्याप्त होगा सेकने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: अभी हम इसको तैयार करने के तरीके की और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम रागी का आटा और अगर बेसन डालना है तो दोनों को डाल देंगे। फिर धीरे धीरे पानी डालेंगे हम इसमें, धीरे धीरे पानी डालते हुए पतला घोल तैयार करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम हाथ से मसल के इस घोल को तैयार करें ताकि इसमें गुठली ना पड़े।
0: बिल्कुल।
1: फिर हम इस घोल में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके बाद हम घोल को 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि ढक के रखने से क्या होगा कि जो रागी है और जो इसमें हमने बेसन मिलाया है वो थोड़ा फूल जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और इसके फूलने से इसका जो स्वाद होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
0: जी हाँ।
1: और जब हमने 10 मिनट के लिए इसको रख दिया है, उसी वक्त हम इसको इस पे आग पे तवा भी रख देंगे ना, हमारा तवा जो होता है जिस पे अपन रोटी बनाते हैं, तो उसको हम रखेंगे मध्यम आंच पे रखेंगे, तो मध्यम आंच पे जब अपन उसको रखेंगे तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे ही वो थोड़ा गर्म होगा तो हम उस पर थोड़ा तेल लगा देंगे चम्मच से, ठीक है। और जब उस पे तेल लगा देंगे तो एक बड़ा चम्मच, अब हमारे पास घोल तो तैयार है ही,
0: जी जी,
1: तो उस घोल में से हम एक बड़ा चम्मच भरेंगे और उसको उस तवे के ऊपर जहाँ जिसपे हमने तेल लगाया है उस पे डाल देंगे, और उसको घुमा के पतला पतला गोल गोल इतना फैला देंगे कि वो पतला पतला गोल गोल पूरे तवे पे फैल जाए।
0: जी जी।
1: है ना। अभी हम क्या करेंगे, अब कि वो जो पूरा फैला दिया है हमने तवे पे ना, तो उसके जो किनारे हैं उस पर थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद तेल छिड़केंगे।
0: जी हाँ।
1: तेल डालेंगे और चारों तरफ पूरे गोले की तरफ डालेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं डाल दिया और कहीं पे नहीं डाला, या कहीं ज्यादा डाल दिया कहीं पे कम डाला, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो चीला है वो सुनहरा होने लगेगा।
0: बिल्कुल।
1: है ना। और सुनहरा होते होते जैसे तेल से क्योंकि हमने गोल को डाला था तो धीरे धीरे वो तवे को छोड़ने लगेगा। है ना। तो जैसे वो तवे को छोड़ने लगेगा तो हम उसमें पलटा डालेंगे नीचे उसमें, और पलटे की मदद से उसको पलट के और उल्टा तवे पे डाल देंगे।
0: जी जी।
1: अब क्योंकि एक तरफ से तो हमारा चीला सिक के तैयार है, अभी दूसरी तरफ से कच्चा है, तो हम उसको दूसरी तरफ से भी वैसे ही सेकेंगे जैसे पहली तरफ से सेका था हमने।
0: जी हाँ।
1: तो जैसे ही हम उसको दूसरी तरफ से पलट के और वापस तवे पे डालेंगे तो इसको फिर से तेल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से हम वैसे ही जैसे पहले थोड़ा थोड़ा सा तेल डाला था एक या दो बूंद को पूरे चीले पे, वैसे ही एक या दो बूंद का तेल हम उस पर वापस डालेंगे और एकदम कम आंच पे इसको अच्छे से सेक लेंगे।
0: जी जी।
1: अच्छा, इसके सिकने की ये भी निशानी है कि जब तक चीला सिकेगा नहीं तब तक वो तवे को छोड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: तवे के चिपका रहेगा। वैसे ही वो सिक जाता है वैसे ही वो अपने आप तवे को छोड़ देता है, लेकिन इसमें आंच का भी कमाल होता है कि आंच को हमको बिल्कुल कम रखना है।
0: जी जी।
1: क्योंकि तेज आंच रखने से वो जलने की संभावना भी उसकी रहती है। तो इस तरह से पहला और दूसरा दोनों तरफ से जब हम उसको सेक लेंगे तो अभी हमारा गर्मा गर्म चीला तैयार है। अब हम इसको अपने स्वाद के अनुसार चटनी के साथ में परोस सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक चीज और ध्यान रखने की होती है अंजू कि जो घोल होता है इसको जरूरत से भी थोड़ा पतला रखें, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा रखने से क्या होता है कि वो जो चीला है वो जलने की संभावना रहती है, चिपक जाएगा, छोड़ेगा नहीं तवे को। तो जब हम उसको थोड़ा ज्यादा पतला रखेंगे ना तो हमारा चीला है वो पतला और कुरकुरा बनेगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये हम जो शाम का नाश्ता होता है उसमें ये बहुत ही हल्के भोजन की तरह हम इसको काम में ले सकते हैं। और मान लो कि हमारा घोल बच गया है तो इस घोल को अपन एक दिन तक रख भी सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हमारे पास फ्रिज है तो हम फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो इसको किसी बर्तन में कपड़े से ढक के और पानी की परात भर के और उस बर्तन को उसमें पानी में रख के और अगले दिन तक इसको छोड़ सकते हैं और अगले दिन भी इसको काम में ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने रागी का हलवा और रागी का चिल्ला हम कैसे बनाकर खा सकते हैं, यही इसे बनाने के और इसे सेवन करने के क्या फायदे हैं उसके बारे में भी आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
1: जैसा कि हमें पता है कि धीरे धीरे हमारे बच्चों में और महिलाओं में हम देख रहे हैं कि खून की कमी रहती है, एनीमिक रहते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको भी हम जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है और उसको कुछ ऊपर का आहार जब देना शुरू करते हैं तो उस वक्त बच्चे को पौष्टिक आहार की बहुत जरूरत महसूस होती है और जरूरत होती भी है, नहीं तो बच्चे में कमजोरी आ जाती है और वो पौष्टिकता का अभाव बढ़ता चला जाता है।
0: बिल्कुल।
1: उसको खून बढ़ाता है, कैल्शियम बढ़ाता है। रागी का हलवा भी खाओ और रागी का चीला खाओ तो हम हमारी जो महिला बहनें और बच्चे हैं उनके लिए तो ये पौष्टिकता से भरपूर है ही, लेकिन हमारे पुरुष साथी हैं उनको भी इससे ताकत मिलेगी और काम करने की हिम्मत और ज्यादा जुटा पाएंगे।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवाया है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों के साथ जुड़ के अपनी जानकारियाँ साझा करने में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है अंजलि। आप इस तरह के अवसर देते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसा कि श्रोता साथियों अभी हमारे बीच में मधु मैम जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने रागी का चिल्ला और रागी का हलवा हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जाना। इन दोनों व्यंजनों में खास बात यह है कि इन्हें घर में उपलब्ध सामान्य सामग्री से बनाकर खाया जा सकता है जिससे पोषण भी मिलता है और स्वाद की जो चीजें हैं वो भी पूरी हो जाती है। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आपको ये दोनों रेसिपीज अवश्य पसंद आई होगी और आप भी अपने घर पर इन्हें बनाकर अवश्य खाएंगे। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता मैं आपको बताना चाहूंगी, तो लिख लीजिए हमारे कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए व्यंजन की विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

स्वागत रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, ये मेरा संविधान है।

पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए कैसे।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत रही थी, संविधान और आदिवासी में हम जान रहे थे, भील विद्रोह 1800 से लेकर 1925 के बारे में हमने जाना, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बारे में हम जान पाए, इसी के साथ हमने मुंडा विद्रोह 1895 और 1900 के बारे में जाना, और उसी में हम आगे जान रहे थे संविधान निर्माण प्रक्रिया और आदिवासी को लेकर।
1: जी हाँ,
0: तो उसी में आगे बात करें हम। तो श्रोता साथियों, ब्रिटिश सरकार ने भारत की आबादी के बहुत बड़े हिस्से को क्रिमिनल टाइबस एक्ट 1871 और 1911 के तहत आपराधिक जातियां घोषित कर दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपना जीवन जीने के लिए अपराध का सहारा लेने वाली जातियां हैं, इन्हें जरायम पेशा कहा जाता था। यह कानून भी संविधान के साथ समाप्त नहीं हुआ था, इसे वर्ष 1952 में समाप्त किया गया।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि इसे 1952 में समाप्त किया गया, तो विचित्र बात है कि इसे पूरी तरह समाप्त करने के बजाय इसके स्थान पर आदतन अपराधी अधिनियम 1952 बना दिया गया। साथियों, भारत में जरायम पेशा जनजातियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया, विमुक्त जनजाति 198 समूह और घुमंतू जनजाति 1500 समूह। इनके साथ आज तक भेदभाव होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, सभ्यता के बीच रहने वाले 1.30 करोड़ लोग आज भी वन्य अवस्था में हैं और वंशानुगत अपराधियों का जीवन जी रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने इस बात की शर्म महसूस नहीं की। वे संभवतः यह स्वीकार नहीं करेंगे कि लोगों ने उन्हें सभ्य बनाने की, चिकित्सा सहायता देने, उनकी स्थिति बेहतर करने या समग्र नागरिक बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मान लीजिए कि कोई भी आदिवासियों के लिए वह सब करना चाहता है जो ईसाई मिशनरियां कर रही है, तो क्या वह कर पाता? मेरा उत्तर है कि नहीं, क्योंकि आदिवासी की स्थिति बेहतर बनाने का मतलब है उन्हें अपना समझकर अपनाना, उनके बीच रहना और उनके साथ भ्रातृत्व की भावना विकसित करना, यानी उनसे प्रेम करना। किसी भी लोगों के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? उसका पूरा जीवन अपनी जाति जो बचाए रखने की उद्विग्न चेष्टा में बीतता है। जाति उसकी बहुमूल्य संपत्ति है। वैदिक दिनों की घृणित अनार्यों के अवशेष आदिवासियों के साथ संपर्क कायम कर वह इसे खो देने के लिए सहमत नहीं हो सकता।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें कि आर्यों ने भारत के देशज लोगों को अनार्य कहा। वेदों में भी देशज लोगों को अनार्य कहा जाता है। आर्यों ने भिन्न जीवन पद्धति और जीवन शैली के कारण अनार्यों को अपने धार्मिक ग्रंथों में घृणित रूप से चित्रित किया। वास्तव में भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ने जो चरित्र अख्तियार किया वह आदिवासी समाज को असहज बनाता है और उन्हें व्यापक भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं बनने देता। संविधान बनने की प्रक्रिया में भी उनके मूल सवालों को सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। रियासतों, जाति, हिंदू मुस्लिम और राज्य व्यवस्था से जुड़े विषयों पर शब्द और अर्थ दोनों ही संदर्भों में बहस हुई, किंतु आदिवासी अस्मिता के सवाल को उठाए जाने के बावजूद उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था।
1: बिल्कुल अंजलि, सच है कि स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के समय सांप्रदायिकता, छुआछूत और जातिगत शोषण पर बहस चरम पर थी। इन पर राजनीतिक चेतना भी उच्च स्तर पर थी। दूसरी ओर भारत में आदिवासियों के हकों और अस्मिता के सवाल पर तुलनात्मक रूप से बहुत कम बहस और पहल हुई। दलित समुदाय, छुआछूत और जाति के विषय पर बहस गंभीर थी और उसी में थोड़ा स्थान आदिवासियों को भी दे दिया गया।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें संविधान सभा में आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर प्रावधान और व्यवस्था बनाने का काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उप समिति द्वारा करना तय हुआ था। इन समिति ने अल्पसंख्यकों को तीन भागों में बांटा था। वर्ग अ, जिसमें भारतीय संघ में रियासतों को छोड़कर आधे प्रतिशत की कम आबादी वाले यानी एल्गो इंडियन, पारसी और असम के मैदान में रहने वाले कबीले। वर्ग ई में बताया गया कि वे जिनकी आबादी 1.5% से अधिक नहीं है, यानी भारतीय ईसाई और सिख। वर्ग ऊ, वे जिनकी आबादी 1.5% से अधिक है, यानी कि मुस्लिम और अनुसूचित जातियाँ।
1: बिल्कुल,
0: बताना चाहेंगे श्रोता साथियों के स्वतंत्रता आंदोलन आदिवासियों के साथ भेदभाव के बारे में। उस दौर का आदिवासी नेतृत्व इस बात को लेकर सजग था जागृति जी, कि अगर आदिवासियों को किसी खास पहचान में बांधा गया, मसलन अगर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया गया, तो आगे चलकर उनकी मूल निवासी की पहचान पर सवालिया निशान लग सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान दलित और आदिवासियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। आदिवासी नेता अपने समुदाय को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखे जाने से सहमत नहीं थे। उनकी बुनियादी मान्यता थी कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और किसी भी अन्य समुदाय से पहले से भारत भूमि पर निवास करते आए हैं। उन्हें अलग श्रेणी में रखना गलत नीति है, क्योंकि इससे ये मान्यता स्थापित होगी कि आदिवासी भारत में हाल की कुछ सदियों में आकर बसे हैं और इस आधार पर उनके साथ द्वयम दर्जे का सुलूक होने लगेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: संविधान सभा के मुखर और सजग आदिवासी स्वयं जयपाल सिंह मुंडा ने 24 अगस्त 1949 को संविधान सभा में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यदि किन्हीं लोगों को भारत में राज करने का अधिकार है तो आदिवासियों को ही है। वे प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और अन्य लोग दूसरी, तीसरी, चौथी अथवा किसी अन्य श्रेणी के भारतीय हैं।
0: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी बातों को जान रहे थे, हम जान रहे थे आदिवासियों के साथ हुए भेदभाव को लेकर। तो श्रोता साथियों, आगे इसी में और बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र पढ़कर आने वाले जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में बिहार से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर आए थे। उनके इस बयान से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि वह मूल निवासी की पहचान के पैरोकार थे। वे भेदभाव की राजनीति को समझ चुके थे। यही कारण है कि वह स्वतंत्र हो रहे नए भारत की शासन व्यवस्था में आदिवासियों की मूल पहचान बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: उनकी यह आपत्ति भी उचित थी कि संविधान सभा में आदिवासी समुदाय से जुड़ी बहसों में उनको देश के एक ऐसे समूह के रूप में पेश किया जा रहा था जो लाचार था। उन्होंने कहा भी कि हम किसी प्रकार की भीख नहीं मांग रहे हैं। बहुत अल्पसंख्यक समुदाय ने पिछले 6000 वर्षों में जो पाप किए हैं, उनके लिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए। इसका निर्णय वे करे कि भूतपूर्व शासकों ने इस देश के आदिवासियों के साथ न्याय किया या नहीं, ये हमारे लिए सवाल था।
1: बिल्कुल अंजलि। इसी के साथ अंजलि, अगर बात करें मुंडा के कहने को लेकर, तो मुंडा का कहना था कि तत्कालीन राजनीति में कांग्रेस ने भी आदिवासियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान नहीं किया। बिहार में आदिवासियों की जनसंख्या 41 लाख थी, लेकिन वहाँ की विधानसभा में केवल 7 आदिवासी चुने गए। इसी के साथ साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, संविधान सभा अल्पसंख्यक कहे जाने का विरोध, यानी कि असमानता की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे बिना विशेष संवैधानिक प्रावधानों के पाटा भी नहीं जा सकता है। ये खाई केवल आर्थिक गरीबी के कारण नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के प्रति सांस्कृतिक, सामाजिक, सामंती भावनाओं के कारण भी गहरी हुई है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इस विषय पर संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने 27 अगस्त 1947 को सभा में कहा कि मैं भी परामर्श समिति का सदस्य हूँ, किंतु अभी अपने साथियों को रिपोर्ट के लिए बधाई देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। हम संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक है, इस बात को सामने रखकर हम यहाँ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं या मुसलमानों से हम कम हैं अथवा पारसियों से अधिक, हमारी इस स्थिति का इस बात से कोई संबंध नहीं। हमारा पक्ष तो इस बात पर निर्भर है कि हमारे और जाति के अन्य लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा स्तरों में जमीन और आसमान का फर्क है, और यह संविधान द्वारा लगाई गई किसी विशेष शर्त द्वारा ही संभव हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: हम लोगों को साधारण जनता के तल तक लाया जा सके। मेरे विचार में आदिवासी अल्पसंख्यक नहीं है। मेरा तो हमेशा से यही ख्याल रहा है कि वे लोग जो देश के आदि स्वामी थे, उनकी संख्या चाहे कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, कभी भी अल्पसंख्यक नहीं समझे जा सकते। उन्हें ये अधिकार परंपरा से प्राप्त हुआ है और संसार में कोई भी उनसे ये छीन नहीं सकता।
1: जी हाँ।
0: हम इस समय परंपरा से प्राप्त इन अधिकारों की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरे लोगों से जो व्यवहार होता है उसी की मांग कर रहे हैं। भूतकाल में हमें इस तरह अलग अलग रखा गया था मानो कि हम किसी चिड़ियाघर में रहते हों। इसके लिए मुझे बड़े राजनीतिक दलों, अंग्रेजी सरकार और प्रत्येक शिक्षित भारतीयों को धन्यवाद देना है।
1: बिल्कुल अंजलि, आदिवासी और ऐतिहासिक अन्याय के शिकार को लेकर हम बात कर रहे थे। जयपाल सिंह ने कहा कि आदिवासी समुदाय अन्य समुदाय के साथ मेलजोल के लिए तत्पर है, तथा अन्य समुदाय को भी इस दिशा में सहजता से आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी जी,
1: उन्होंने कहा, हमारा कहना तो यह है कि आपको हमारे साथ मिलना ही होगा और हम भी आपके साथ मिलने के लिए तैयार है। इसी कारण से तो हमने धारा सभाओं में स्थानों की सुरक्षा के लिए जोर लगाया है, ताकि हम आपको समीप आने के लिए बाध्य कर सके और स्वयं अवश्य ही आपके समीप आए। हमने पृथक निर्वाचन की कभी मांग नहीं की और वस्तुतः हमें यह कभी प्राप्त नहीं हुआ। केवल आदिवासियों के एक छोटे से अंग को, जो अन्य मतों को और विशेषकर पाश्चात्य ईसाई को अपना चुका था, पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ, परंतु इनकी बहुत बड़ी संख्या जहाँ कहीं पर भी उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, साधारण निर्वाचन के ही मातहत थी। हाँ, उनके लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए थे, अतः जहाँ तक आदिवासियों का संबंध है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु आंकड़ों की दृष्टि से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य के तहत चुनाव हुए, तब भी आदिवासियों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जयपाल सिंह ने संविधान सभा को बताया कि सन 1935 के एक्ट के अनुसार भारत की सारी प्रांतीय धारा सभाएं, यानी राज्यों में के 1585 सदस्यों में से आदिवासियों के केवल 24 सदस्य ही थे, केंद्र में तो एक भी उनका सदस्य न था।
1: जी हाँ।
0: अब वयस्क मताधिकार विधि के अनुसार जो प्रत्येक लाख आबादी के पीछे एक सदस्य भेजने का अधिकार देती है, हमारी स्थिति में बड़ा भारी फर्क आएगा। अब यह गिनती पहले से 10 गुना होगी। जब मैं भारत का जिक्र करता हूँ तो क्या मैं देसी रियासतों से भी यह निवेदन कर सकता हूँ कि देसी रियासतों में आदिवासियों को कहीं थोड़ा सा भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय भारत के भाव वहाँ पर भी उचित रूप से प्रवेश कर जाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ सभा में अनुचित जातियों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की बात कही गई, किंतु आदिवासियों को इस मामले में भुला ही दिया गया। इस विषय पर जयपाल सिंह और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बीच नोकझोंक भी हुई। किसी के द्वारा ये कहे जाने पर कि अल्पसंख्यक और कबायली विदेशियों का मुंह ताकते हैं, जयपाल सिंह ने कहा कि हम विदेशियों का नहीं देशवासियों का मुंह ताकते हैं।
2: जी जी,
1: हम विदेश नहीं गए, हम बातचीत करने लंदन नहीं गए, हम कैबिनेट मिशन के पास नहीं गए, हम केवल अपने देशवासियों की ओर देखते हैं कि वह हमसे समुचित और न्याय सम्मत व्यवहार कर सके। गत 6000 वर्षों से हमारे साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। सलाहकार समिति में किसी आदिवासी महिला सदस्य का नाम नहीं है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो ये तो आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने ढेर सारी बातों को जाना। हम जान पाए कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों के साथ हुए भेदभाव को लेकर, अल्पसंख्यक कहे जाने का विरोध, और इसी के साथ हमने जाना ऐतिहासिक अन्याय के शिकार आदिवासी को लेकर।
1: जी हाँ।
0: अगले रविवार को हमारी श्रोता साथियों से फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ में।
1: बिल्कुल साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। भाई ने बोनो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जिनी हवा में आपड़े हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हु है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बना वंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वागत करती हूं आज की सायंकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। श्रोताओं, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज वार रविवार दिनांक 19 जुलाई 2026 का दिन है। श्रोताओं, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं आज के पुनः प्रसारण कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की गाथा में, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसी क्रम में अगला कार्यक्रम होगा हमारा प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति यानी कि मेरे साथ में। श्रोताओं, फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे हमारे मेहमानों के जीवन परिचय को, और इस कार्यक्रम को लेकर आने वाली है हमारी रेडियो साथी आरजे अंजलि पाराशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता ही रही हूँ, इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा 7:30 पर गांधी जी को पाने का एक प्रयास कार्यक्रम हिंद स्वराज। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। इस कार्यक्रम को श्रोताओं आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इन कार्यक्रमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर और सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को 9 से 10 बजे के बीच में। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा, क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है।

की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएं, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथनें दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा,

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके, जल्दी थकान था भी।

0: शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो आ सब अनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई एन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
3: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: को लेकर बात कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि लोक भाषा और संस्कृति का संरक्षण क्या है। हिंदी साहित्य की शक्ति केवल मानक हिंदी में नहीं बल्कि कई विभिन्न बोलियों और लोक भाषाओं में भी है। राजस्थान की वागड़ी, ब्रज अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली जैसी भाषाएं परंपराएं भारतीय संस्कृति को समृद्ध करती है। अंजलि, साहित्यकार लोकगीतों, लोक कथाओं, कहावतों और स्थानीय परंपराओं को शब्द देते हैं।
1: जी जी,
0: इस तरह वे हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। ये विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है श्रोताओ, जहाँ भाषा के साथ जीवन शैली, प्रकृति से जुड़ा और पीढ़ियों का ज्ञान भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं, आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र चेतना के कवि के बारे में, तो श्रोता साथियों, हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त का नाम राष्ट्र चेतना से जुड़ा हुआ है। उनकी कविताओं ने लोगों के मन में देश प्रेम और आत्मसम्मान की भावना जगाई। उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज और राष्ट्र से जुड़े विषयों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि उनकी रचनाएं लोगों को अपने इतिहास, समाज और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: साहित्य की यही शक्ति कि वह केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि मनुष्य के भीतर प्रश्न और विचार भी पैदा करता है।
1: जी हाँ अंजलि, आज के साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई पुस्तकें, ब्लॉग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हिंदी साहित्य को नई पहुंच दी है। आज कोई साहित्यकार अपने विचारों को कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। डिजिटल माध्यम पर लिखी गई बात तेजी से फैलती है, इसीलिए साहित्यकारों को तथ्य, भाषा और सामाजिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना होगा। श्रोताओं, जैसा कि हम हिंदी भाषा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो अंजलि, राष्ट्र निर्माण में युवा सबसे बड़ी शक्ति है। अगर युवा साहित्य पढ़ते हैं तो उनमें भाषा के साथ विचार करने और सही गलत को समझने की क्षमता भी विकसित होती है। युवाओं को केवल परीक्षा के लिए साहित्य पढ़ने के बजाय जीवन को समझने के लिए भी साहित्य पढ़ना होगा। श्रोताओं, प्रेमचंद से समाज को, दिनकर से साहस को, महादेवी वर्मा से संवेदना को और अनेक साहित्यकारों से जीवन के अलग अलग पहलू को समझा जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साहित्यकारों ने केवल देशभक्ति पर ही नहीं लिखा, उन्होंने समाज की समस्याओं को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा और महिलाओं की स्थिति जैसे विषयों पर साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज का ध्यान आकर्षित किया है। साहित्य हमें केवल ये नहीं बताता कि समाज कैसा है, बल्कि सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि समाज कैसा होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जब पाठक किसी कहानी में किसी गरीब किसान का संघर्ष पढ़ता है तो उसके भीतर संवेदनाएं पैदा होती हैं। जब वह किसी महिला के संघर्ष को पढ़ता है तो समाज में समानता की आवश्यकता को समझा जाता है।
1: जी हाँ।
0: जब वह किसी बच्चे की कठिनाइयों के बारे में पढ़ता है तो शिक्षा और संरक्षण का महत्व समझता है। इस प्रकार साहित्य समाज में मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जिस पीढ़ी के हाथ में किताब होती है उसके हाथ में अपने भविष्य को समझने की शक्ति भी होती है। श्रोताओं, आज के साहित्यकार की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक है। समाज में तेजी से बदलाव हो रहे हैं अंजलि, ये हम सभी देख रहे हैं। तकनीक भी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही अकेलापन, तनाव, सामाजिक दूरी और गलत सूचनाओं जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही है। ऐसे समय में श्रोताओं, साहित्यकारों को ऐसा साहित्य रचना होगा जो समाज को जोड़ने का काम करे, न कि बांटने का। साहित्य में विविधता का सम्मान हो, प्रकृति की चिंता हो, समानता हो, शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य और मानवीय संवेदनाओं को स्थान मिलना चाहिए। जिस प्रकार हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास केवल शब्दों का इतिहास नहीं है श्रोताओं, ये भारत की सामाजिक चेतना, संघर्ष, संस्कृति और परिवर्तन की यात्रा भी है। साहित्यकारों ने अपने शब्दों से समाज को आईना दिखाया अंजलि, लोगों को जागरूक किया और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाया।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज के बच्चे और युवा मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में अधिक समय बिताते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तकनीक का उपयोग श्रोता साथियों जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ने की आदत भी उतनी ही आवश्यक है। हमें बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए, उन्हें पुस्तकों से जोड़ना चाहिए, विद्यालयों में कविता पाठ, कहानी लेखन और भाषण प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। स्थानीय साहित्यकारों को स्कूल में आमंत्रित किया जा सकता है। यदि बच्चों को अपनी भाषा में सोचने, लिखने और बोलने का अवसर मिलेगा तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हिंदी सीखने का अर्थ अन्य भाषाओं से दूरी बनाना नहीं, बल्कि हमें हिंदी के साथ साथ भारत की सभी भाषाओं और बोलियों का सम्मान करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: भाषाओं की विविधता हमारी कमजोरी नहीं जागृति जी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक शक्ति है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों, संस्थाओं या बड़ी योजनाओं से नहीं होता। राष्ट्र निर्माण तब होता है जब नागरिक जागरूक होते हैं, समाज में संवेदना होती है, जब युवा अपने भविष्य के साथ देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं और जब हमारी भाषा और संस्कृति जीवंत रहती है। इसलिए हिंदी भाषा को मजबूत करना केवल हिंदी बोलना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी भाषा का सम्मान करना, अच्छे साहित्य को पढ़ना, अपनी लोक भाषा और संस्कृति को बचाना और विचारों को जिम्मेदारी के साथ समाज तक पहुँचाना। कहना चाहेंगे श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, एक शब्द विचार बदल सकता है, एक विचार समाज बदल सकता है और एक जागरूक समाज राष्ट्र की दिशा बदल सकता है अंजलि। इसीलिए साहित्यकार केवल कलम चलाने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि समाज की चेतना का प्रहरी भी है।
0: जी हाँ।
1: जब हिंदी के शब्दों में संवेदना होती है, सत्य और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी जुड़ती है, तब वही साहित्य राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बन जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। हमारे पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और आधुनिक तकनीक है, लेकिन इन सबके बीच मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: साहित्य हमें यही याद दिलाता है कि इंसान केवल मशीनों और सुविधाओं से नहीं बनता, उसके भीतर भावनाएं, मूल्य और विचार भी होते हैं। आज जब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से जानकारी फैलती है, तब भाषा का जिम्मेदारी से उपयोग करना भी आवश्यक है। हमें अपनी भाषा का उपयोग लोगों को जोड़ने के लिए करना चाहिए, ज्ञान फैलाने के लिए करना चाहिए, समाज में सकारात्मकता का बढ़ावा करने के लिए करना चाहिए, स्थानीय संस्कृति बचाने के लिए करना चाहिए। भाषा का उपयोग नफरत और भेदभाव फैलाने के लिए नहीं बल्कि संवाद और समझ बढ़ाने के लिए करना चाहिए।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, जाना हिंदी भाषा के बारे में, और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम कथा कहानी को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है बप्पा की सिख और आरव का संकल्प। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

भगवान गणेश की पूजा का पर्व नहीं है, यह हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देता है। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभारंभ का देवता माना जाता है, इसीलिए किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले हम उनका स्मरण करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या गणेश जी को याद करना केवल पूजा और आरती तक सीमित है, या फिर उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना भी गणेश चतुर्थी का हिस्सा है। श्रोता साथियों, आज की कहानी एक ऐसे ही युवा की है जो गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की मूर्ति तो घर लेकर आया, लेकिन बप्पा ने उसके जीवन में उससे कहीं बड़ी चीज, एक नई सोच स्थापित कर दी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। तो श्रोता साथियों, हम देख रहे हैं कि कल गणेश चतुर्थी है और कल सभी के घर में बप्पा आने वाले हैं। तो ये कहानी भी इसी से जुड़ी है कि अगर हम बप्पा को घर पर ला रहे हैं तो उनका किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह से उनकी पूजा करनी है, और सिर्फ ये 10 दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन में बप्पा को किस तरह से हमारे जीवन में स्थान देना है, वो भी आज के इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। साथियों, कहानी शुरू होती है इस तरह से। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवा रहता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था और उसके सपने भी बड़े थे। वो चाहता था कि पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करे और अपने गांव के युवाओं के लिए भी कुछ करे। लेकिन एक समस्या थी, आरव के पास सपने तो बहुत सारे थे पर उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करने की आदत नहीं थी। कभी वो मोबाइल पर घंटों समय बिताता, कभी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता और कभी अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को बता देता था। जब परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते श्रोताओं, तो वो कहता, मेरे पास पढ़ने का सही माहौल ही नहीं था। जब किसी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिलती तो कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। और जब कोई उससे पूछता कि भविष्य में क्या करना है तो वो कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में सोच लेंगे। साथियों, आरव के पिता अक्सर उसे समझाते हैं, बेटा जिंदगी में अवसर हर किसी को मिलता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन और धैर्य चाहिए होता है। आरव मुस्कुरा देता, उसे लगता था ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। फिर क्या था दोस्तों, फिर एक दिन गणेश चतुर्थी आई। पूरे शहर में उत्साह था, गलियों में सजावट हो रही थी, बच्चे गणपति बप्पा की छोटी छोटी मूर्तियां लेकर घर आ रहे थे। आरव भी अपने दोस्तों के साथ गणेश जी की मूर्ति लेने बाजार गया। मूर्ति लेकर लौटते समय उसके दोस्त ने कहा, इस बार हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी सजावट होगी। दूसरे दोस्त ने कहा, और सबसे बड़ा कार्यक्रम भी होगा। श्रोताओं, जैसे कि दोस्त आपस में बातें कर रहे थे तो आरव भी बहुत उत्साहित था। घर पहुंचकर गणेश जी की स्थापना हुई, पूजा हुई और आरती हुई। आरव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बप्पा मेरी जिंदगी में सफलता दे दीजिए। पूजा समाप्त हुई तो आरव अपनी दादी के पास बैठ गया। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा बप्पा से क्या मांगा? आरव ने कहा, सफलता। तभी दादी ने पूछा, और सफलता पाने के लिए तुम क्या करोगे? उस समय श्रोताओं, आरव चुप हो गया। दादी ने फिर से पूछा कि क्या करोगे? सिर्फ बप्पा से मांगने से रास्ता नहीं बनता है आरव, बप्पा रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। ये बात आरव के मन में बैठ गई। श्रोताओं, दादी ने गणेश जी की मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है कि गणेश जी के कान इतने बड़े क्यों दिखाई देते हैं? तभी आरव बोला, शायद इसीलिए कि वे सबकी बातें सुनते होंगे। दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, हमें भी जीवन में अच्छा श्रोता बनना चाहिए। आज का युवा बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन सुनना कम चाहता है। दादी ने कहा, अगर तुम अपने माता पिता की सलाह सुनोगे, अपने शिक्षकों की सीख सुनोगे और अपने अनुभव से सीखोगे तो तुम्हारी कई गलतियां शुरुआत में ही रुक सकती है। श्रोता आरव बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी दादी ने आगे कहा, सुनना कमजोरी नहीं है बेटा, सही बात को सुनकर स्वीकार करना समझदारी है। दादी जी ने गणेश जी की आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा कि गणेश जी की छोटी आंखें हैं, हमें एकाग्रता की सीख देती है ये आंखें। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, एक संदेश आता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, एक वीडियो आता है तो पढ़ाई भूल जाते हो, फिर कहते हो कि समय नहीं मिलता। आरव को लगा जैसे दादी उसकी ही कहानी बता रही हो। दादी ने कहा, जिस युवा का लक्ष्य स्पष्ट होता है वो अपने समय और ध्यान की रक्षा करता है। आरव ने पहली बार श्रोताओं महसूस किया कि समस्या समय की कमी नहीं है बल्कि ध्यान से बिखराव की है। तभी दादी बोली, श्रोताओं कि गणेश जी की सुन हमें एक और बात सिखाती है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। जीवन हमेशा

या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी हमें असफलता मिलती है, कभी रास्ता आसान हो जाता है, कभी कठिन रास्ते होते हैं। समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को देखकर रुकता नहीं, वो रास्ता बदल लेता है। तरीका बदल सकता है बेटा, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये बातें दादी आरो को बता रही थी दोस्तों, तो आरो सोचने लगा कि शायद मेरी समस्या यही है, एक बार असफल होता हूँ तो प्रयास भी छोड़ देता हूँ, मुझे प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। और आरो इसी तरह गंभीरता से दादी की बातों को सुन रहा था। अब दादी कहती है कि तुमको मूषक से भी सीख लेनी चाहिए, मूषक यानी चूहा। दादी ने कहा कि गणेश जी के वाहन मूषक की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि गणेश जी के साथ साथ छोटा सा मूषक क्यों है तुम जानते हो? आरव ने सिर हिलाया और बोला हाँ। दादी बोली ये हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी अपनी भूमिका और महत्व होता है। जीवन में किसी काम को छोटा मत समझो, छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव बनती है। दोस्तों ये बात आरव के मन को बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ ये सोच कर रुक जाता हूँ। तभी दादी ने उसके मन को पढ़ लिया और कहा कि बेटा बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़ा कदम जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक छोटा कदम ही काफी होता है। तो दोस्तों अगली सुबह जब आरव ने एक कागज लिया और उस पर लिखा कि गणेश चतुर्थी का मेरा संकल्प क्या हो सकता है, उसने 5 बातें अपने कागज पर लिखी कि रोज कुछ समय पढ़ाई और सीखने के लिए वो समय देगा, मोबाइल का उपयोग जरूरत के अनुसार ही करेगा, असफलता से डरकर वो प्रयास नहीं छोड़ेगा, माता पिता और बड़ों की सलाह ध्यान से सुनेगा, साथ ही अपने गांव और समाज के लिए हर महीने एक काम वो जरूर करेगा। कागज उसने अपनी पढ़ाई की मेज के सामने लगा दिया दोस्तों, लेकिन संकल्प लेना आसान था, उसे निभाना तो मुश्किल होता है। अब दोस्तों कुछ दिन बाद उसकी एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, उसके दोस्त उसे घूमने के लिए बुलाने आए। आरव का मन तो जाने के लिए था, एक पल के लिए उसने सोचा आज पढ़ाई नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। फिर उसकी नजर सामने लगे कागज पर गई, उसे दादी की बात याद आ गई, बप्पा रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो हमें ही है। आरव ने दोस्तों से कहा आज नहीं, पहले अपना काम पूरा कर लो। श्रोताओं दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले कि वाह अब तो तू बहुत बड़ा विद्वान बन गया है। आरव मुस्कुराया और इस बार आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया था, उसने किताब खोली और पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। उस दिन उसने पहली बार अपने मन पर जीत हासिल की थी दोस्तों, उसे समझ आया था कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं खुद की कमजोरियों पर जीत हासिल करनी है। धीरे धीरे आरव की दिनचर्या बदलने लगी, वो सुबह जल्दी उठने लगा, मोबाइल पर समय कम करने लगा, हर दिन कुछ नया सीखने लगा। परीक्षा में इस बार उसके अंक पहले से बेहतर आए थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी दोस्तों कि अब आरव को अपने ऊपर विश्वास होने लगा था। एक दिन उसने देखा कि उसके गांव के कई छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बाद इधर उधर घूमते रहते हैं। तभी आरव ने सोचा कि मैं शाम को 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और एक छोटी सी शाम की अध्ययन कक्षा शुरू कर दी। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आए, फिर 10 आए, फिर 20 आए, कुछ इस तरह दोस्तों महीनों में गांव के कई सारे बच्चे वहां पर आने लगे। आरव अब समझ गया था कि छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती अगर उसके पीछे बड़ी सोच हो तो। अगले वर्ष गणेश चतुर्थी आने वाली थी। आरव ने देखा कि पिछले वर्ष उत्सव के बाद काफी कचरा जमा हुआ था, उसने अपने दोस्तों से कहा इस बार हम गणेश उत्सव के साथ स्वच्छता का भी संकल्प लेंगे। दोस्तों ने पूछा कैसे? श्रोताओं आरव ने कहा कि हम सजावट में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें दोबारा उपयोग किया जा सके, कार्यक्रम के बाद सफाई करेंगे और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। शुरुआत में कुछ लोगों ने कहा दोस्तों कि इतना सोचने की क्या जरूरत है, लेकिन आरव और उसके दोस्तों ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। लोगों ने देखा कि कुछ युवा केवल उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ गए। श्रोताओं गणेश चतुर्थी के दिन आरव फिर बप्पा के सामने बैठा, उसने हाथ जोड़कर कहा बप्पा पिछले साल मैंने आपसे सफलता मांगी थी, इस बार मैं आपसे सफलता नहीं मांगूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसने कहा मुझे सही सोच दीजिए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, गलतियों से सीखने का साहस दीजिए, दूसरों की मदद करने का भाव दीजिए
और जब मैं रास्ता भूल जाऊं पप्पा, तो सही रास्ता पहचानने की बुद्धि दीजिए। दादी पास ही खड़ी थी, तभी उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब तुमने गणेश चतुर्थी का असली अर्थ समझ लिया है। आरो ने पूछा, कैसे, वो क्या है दादी? तभी दादी बोली, बप्पा की मूर्ति घर में स्थापित करना सुंदर परंपरा है, लेकिन उनके गुणों को अपने व्यवहार में स्थापित करना उससे भी बड़ी पूजा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आरो की। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है दोस्तों कि ये कहानी एक युवा की नहीं है, ये हम सभी के लिए एक संदेश है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं, बड़े कान कहते हैं अच्छी अच्छी बातों को सुनो, छोटी आंखें कहती है अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, बड़ा मस्तक कहता है कि बड़ा सोचो, सुंड कहती है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो, बड़ा पेट कहता है जीवन के अनुभवों को धीरे से स्वीकारो, मूषक हमें याद दिलाता है कि छोटी से छोटी शुरुआत भी महत्वपूर्ण होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन जीवन के हर विघ्न को हटाने के लिए हमें भी प्रयास करने पड़ते हैं। तो साथियों, आज हमारे सामने अनेक सारी चुनौतियां है, करियर की चिंता है, पढ़ाई का दबाव है, प्रतियोगिता है, समय की कमी है, डिजिटल दुनिया का आकर्षण और असफलता का डर। लेकिन याद रखना है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा हौसला कितना बड़ा है। अगर लक्ष्य स्पष्ट है, सोच सकारात्मक है और कदम लगातार आगे बढ़ते रहे, तो कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं। तो साथियों, इस गणेश चतुर्थी केवल ये मत कहिए कि गणपति बप्पा मोरिया, इसके साथ ये भी कहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा या निभाऊंगी। इस बार बप्पा से केवल सफलता मत मांगिए, सफल होने की मेहनत करने का संकल्प लीजिए। केवल ज्ञान मत मांगिए, ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करने का संकल्प लीजिए। केवल बाधाएं दूर करने की प्रार्थना मत कीजिए, बाधाओं से लड़ने का साहस भी रखिए, और केवल अपने लिए आगे बढ़ने की इच्छा मत रखिए, अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि श्रोताओं, असली सफलता वही है जिसमें हमारी प्रगति के साथ समाज की भी प्रगति जुड़ी होती है। तो श्रोताओं, आज की कहानी हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है, बप्पा की सच्ची पूजा फूलों से नहीं, अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से होती है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी अपने भीतर के आलस्य पर विजय पाने का संकल्प लें, अपने सपनों को दिशा दें, अपने समय का सम्मान करें, माता पिता और गुरुजनों का आदर करें, पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएं, और हर दिन खुद से एक सवाल पूछें कि आज मैंने अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या किया। याद रखिए, संकल्प छोटा हो सकता है, शुरुआत छोटी हो सकती है, कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन यदि इरादे मजबूत हो तो यही छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसी विश्वास के साथ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम कथा कहानी।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई, वो कहानी और उससे जुड़ी जो बातें थी, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम से जाती हूँ, पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वाकर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

भाई बोनो घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है। बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो। याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूँ बच्चों बात नन्हे दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। ये कहानियाँ तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि बच्चों गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ, तो बच्चों पहली कहानी है हमारी नन्ना दीपक और सच्चाई की जीत। जी हाँ बच्चों, एक समय की बात है, पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गाँव में दीपक नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। दीपक बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा इंसान अमीर या गरीब अपने कपड़ों से नहीं बल्कि अपने अच्छे चरित्र से बनता है। बच्चों दीपक रोज सुबह उठता, माता पिता की मदद करता, स्कूल जाता और शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता। दीपक पढ़ाई में अच्छा था और सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पूरे गाँव में लोग उसे अच्छे व्यवहार के कारण बहुत पसंद करते थे। एक दिन बच्चों स्कूल से घर लौटते समय दीपक को रास्ते में एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने उसे उठाकर देखा, बटुए में बहुत सारे पैसे थे, कुछ जरूरी कागज थे और एक पहचान पत्र भी था। उसके दोस्त मोहन ने कहा, दीपक इतने सारे पैसे, चलो इससे खिलौना और मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। दीपक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में नए जूते और स्कूल का बैग खरीदने की इच्छा आई, लेकिन बच्चों तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उसने अपने दोस्त से कहा, नहीं मोहन, यह पैसा हमारा नहीं है, जिसने इसे खोया होगा वो बहुत परेशान होगा, हमें इसे उसके मालिक तक पहुँचाना चाहिए। दोनों बच्चे पहचान पत्र में लिखे उस पते के अनुसार उस व्यक्ति को खोजने निकल पड़े। काफी देर पूछताछ के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुँचे। जैसे ही बुजुर्ग ने अपना बटवा देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं पूरे दिन से इसे ढूंढ रहा था, इसमें मेरी दवाइयों के पैसे और कुछ जरूरी कागज थे, अगर यह नहीं मिलता तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती। बुजुर्ग ने खुशी खुशी दीपक को इनाम देना चाहा, लेकिन बच्चों दीपक ने विनम्रता से कहा, दादाजी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो केवल आपकी चीज आपको लौटाई है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुमने मुझे केवल मेरा बटवा नहीं लौटाया बल्कि मेरा विश्वास भी लौटा दिया है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच ने अगले दिन ग्राम सभा में दीपक को बुलाया, सबके सामने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे सम्मान पत्र भी दिया गया। स्कूल में भी प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को दीपक की कहानी सुनाई और कहा, बच्चों शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, अच्छे संस्कार भी सबसे बड़ी शिक्षा है। उस दिन के बाद बच्चों गांव के बच्चे दीपक को अपना आदर्श मानने लगे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और दूसरों की चीज उठाने से बचने लगे। अगर किसी को रास्ते में कुछ सामान मिलता तो वह उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करते। कुछ महीनों बाद गांव में तेज बारिश हुई, कई परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दीपक और उसके दोस्त ने मिलकर लोगों की मदद की, किसी के घर राशन पहुंचाया, किसी के लिए दवा लाई तो किसी के बच्चों की देखभाल की। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस बच्चे के मन में ईमानदारी होती है उसके मन में सेवा का भाव भी अपने आप ही आ जाता है। बच्चों समय बीतता गया, दीपक बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर एक शिक्षक बना। वह अपने विद्यालय में बच्चों को हमेशा यही सिखाता कि अपने जीवन में धन से बड़ा चरित्र होता है। वह कहता, अगर आपके पास सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत है तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, पुलिस अधिकारी और शिक्षक बने, लेकिन बच्चों सभी के मन में दीपक की एक बात हमेशा याद रही, गलत रास्ता आसान जरूर हो सकता है लेकिन सही रास्ता ही जीवन को सम्मान देता है। आज भी बच्चों उस गांव में जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो हमारे दीपक की सीख का असर है। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, सही काम करने से आत्मविश्वास और सम्मान दोनों मिलते हैं, अच्छे संस्कार जीवन भर बच्चों हमारे साथ रहते हैं, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। साथ ही बच्चों
सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। एक अच्छे बच्चे का व्यवहार पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। और जैसा कि बच्चों गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी, अब यही मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नन्हा अर्जुन और दया का पेड़। जी हाँ बच्चों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका दयालु स्वभाव था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते थे और गांव के बच्चे उसे अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। अर्जुन के घर के सामने एक बहुत ही पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ बच्चों हर गर्मी में मीठे आमों से लज जाता था। गांव के बच्चे उसकी छाया में खेलते थे, पक्षी उस पर घोंसला बनाते थे और राहगीर उसकी ठंडी छाँव में बैठकर आराम करते थे। एक दिन गांव में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अगर इस पेड़ को काट दिया जाए तो यह सबसे बड़ी दुकान बनाई जा सकती है, इससे बहुत पैसा मिलेगा। गांव के कुछ लोग उनकी बात मानने लगे, लेकिन अर्जुन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा अगर पेड़ कट गया तो पक्षी कहाँ रहेंगे, राहगीरों को छाया कौन देगा, गर्मियों में बच्चों को ठंडी जगह कहाँ मिलेगी। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया, सबने मिलकर पेड़ के नीचे सफाई की, उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगाए और एक तख्ती पर लिखा पेड़ हमारी सांस है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। अर्जुन ने सबको समझाया कि पेड़ केवल फल नहीं देता बल्कि शुद्ध हवा, छाया और जीवन भी देता है। इसी बीच बच्चों गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी, कई छोटे पौधे सूख गए। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें पानी देता। उसने अपने दोस्तों से भी कहा कि हर बच्चा एक पौधे की जिम्मेदारी ले। कुछ दिनों बाद गांव में एक घायल तोता मिला, उसके पंख में चोट लगी थी। बच्चे उसे देखकर डर गए, लेकिन अर्जुन उसे धीरे से घर ले आया। उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसे दाना दिया और पानी दिया। लगभग बच्चे 2 सप्ताह बाद तोता पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर से खुले आसमान में उड़ गया। बच्चों यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्हें समझ आया कि छोटे छोटे दयालु काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुछ समय बाद तेज आंधी आई, गांव के कई पेड़ गिर गए, लेकिन वही पुराना आम का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। उसने कई लोगों को गिरती शाखाओं और तेज धूप से बचाया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि उन्होंने इसे काट दिया होता तो आज यह सब संभव नहीं होता। बच्चों फिर ग्राम सभा बुलाई गई। सरपंच ने कहा आज से हमारे गांव में बिना कारण के कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हर परिवार हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएगा। उसी दिन अर्जुन को पूरे गांव के सामने सम्मानित किया गया बच्चों, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा सम्मान मेरा नहीं, इस पेड़ का है, इसने हमें जीना सिखाया है। उसकी यह बात सभी के दिलों को छू

गई। अब गांव के बच्चे हर रविवार को मिलकर पौधे लगाने लगे, उनकी देखभाल करते और पक्षियों के लिए दाना पानी रखते। कुछ वर्षों बाद वह गांव दूर दूर तक हरा भरा गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां आकर देखते कि छोटे बच्चों ने अपने अच्छे कामों से पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। जब भी कोई नया बच्चा गांव में आता, उसे सबसे पहले उस पुराने आम के पेड़ के पास ले जाया जाता और अर्जुन की कहानी सुनाई जाती। बच्चे प्रेरित होकर कहते, हम भी प्रकृति की रक्षा करेंगे और सभी जीवों से प्रेम करेंगे। आज भी बच्चों, उस गांव में हर वर्ष वृक्ष मित्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन बच्चे पौधे लगाते हैं, पेड़ों की सफाई करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। दया और करुणा हर जीव के प्रति होनी चाहिए। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों, प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सच्ची सफलता बच्चों दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने में है। एक जागरूक बच्चा पूरे गांव की सोच बदल सकता है। आशा करती हूँ कि बच्चों, आपको ये प्यारी सी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में, आपकी अपने दीदी मनीषा दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्ही दिलू की अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि कार्यक्रम में मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई वो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्ही दिलो की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

साथियों, हार मत मानो क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। जी हाँ, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखते हैं, क्योंकि मेहनत हम इतनी खामोशी से कर सकते हैं कि सफलता हमारी शोर मचा दे। मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं बल्कि हौसला बढ़ाने आती है। श्रोता साथियों, आज की मेहनत ही कल की पहचान बनती है।

इस गीत के बाद श्रोता साथियों आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में जब भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं तो एक नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है। तो आज भी हमारे साथ कार्यक्रम में समुदाय की एक महिला जुड़ेंगी जो कि अपने जीवन के संघर्षों से निकलकर खुद भी अपने जीवन में कई परिवर्तन ला रही है और दूसरी

चाहते थे, तो मेरे परिवार वालों ने शादी करवा दी। तो यहाँ पे शादी तो की, पढ़ाई तो मैंने बाहर ही की थी, मेरे फैमिली वालों ने वहाँ बाहर से ही पढ़ाई करवाई थी, लेकिन मेरी फैमिली वाले यहाँ इस परिवार वालों के साथ करवाना नहीं चाहते थे। तो इस संघर्ष के साथ शादी की। फिर यहाँ पे इतना मुझे काम करने नहीं आता था, घर का काम

0: रोकने के लिए अनुभव तो यही हो सकता है कि जो जिन बातों में वंचित हो उनको उन बातों को इन महिलाओं के पास जाए, इन बातें सारी महिलाएं जो भी है सारा वो महिलाएं बाहर आए और जागरूक हुए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है और महिला जागरूक होगी तो इन सारी चीज़ों का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो आपके जीवन में अभी आप क्या कर रही हैं और आप किस मुकाम को प्राप्त करना चाहती हैं और दूसरी महिलाओं को क्या कहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी महिला जागरूक हुए और अपने आगे आए।
1: आप अपने जीवन में क्या करना चाहती हैं अब?
0: मेरे जीवन में यही करना चाहती हूँ कि सारी महिला जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही हो उनसे डरे नहीं और आगे आए, अपने जो भी हो वो आगे जहाँ तक जाना है वहाँ तक वो महिला खुद जाए और खुद जागरूक होए।
1: बिल्कुल, तो समाज में ऐसा क्या परिवर्तन आप लाना चाहती है अभी के समय में जो अभी तक भी उसको लेकर आवाज नहीं उठी है?
0: अभी तक महिला घर से बाहर नहीं निकल रही है, तो महिला बाहर निकले, घर से बाहर निकले।
1: तो आपके क्षेत्र में महिलाएं अभी भी घर के अंदर रहती हैं, घूंघट निकालती हैं, ये सारी चीजें हो रही है ऐसा?
0: हाँ हो रही है अभी।
1: तो आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करती हैं उनके लिए?
0: उनके लिए मैं ये प्रयास करती कि वो भी महिलाएं बाहर निकले और वो भी अपनी तरह अपने मन मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार रहे।
1: आपके जीवन का कोई ऐसा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ऐसी चुनौती जिसमें आपको बहुत हताशा निराशा हुई लेकिन आपने फिर भी अपने आप को और अपने परिवार को संभाला?
0: घूंघट डालना, घर से बाहर निकलने के लिए मना करते थे।
1: आपके हस्बैंड ने आपको कैसे सपोर्ट किया?
0: क्योंकि जो भी कर रही वो अच्छे के लिए कर रही है और महिलाओं के लिए कर रही है, जो भी कर रही वो अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कर रही है ताकि वो भी उसको देख के और भी महिला सीखे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको आपके हस्बैंड का भी सहयोग मिला और किस तरीके से आप जो कार्य कर रही थी वो महिलाओं के लिए ही कर रही थी। तो अंत में आप जो महिलाएं आपका कार्यक्रम सुन रही हैं, जो भी व्यक्ति आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं यही संदेश देना चाहती कि और भी महिला जागरूक हुए मेरी तरह अपने हक अधिकार पे आगे आए और किसी से डरे नहीं और आगे आए।
1: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे मेहमान जुड़े हुए थे जिनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, आशा करते हैं कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुगाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। श्रोता साथियों, गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव के लिए किसी बड़े पद या ताकत की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति का छोटा सा सही कदम भी समाज में बड़ी सोच की शुरुआत कर सकता है। इसलिए शुरुआत हमेशा अपने आप से करें।

दर्शन पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए, कैसे

बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि कशिश, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमने नारी प्रकरण के बारे में जाना था, यही आज रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारे साथ प्रकरण जुड़ रहा है राष्ट्रपति।
1: बिल्कुल,
0: जानेंगे श्रोता साथियों राष्ट्रपति प्रकरण में ढेर सारी बातों को। और अगर शुरुआत करें तो श्रोता साथियों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपति कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिसने जीवन में सत्ता का कोई पद नहीं संभाला, न ऐसी कोई आकांक्षा रखी। उन्हें उनके साथ तीव्र मतभेद रखने वाले नेताजी ने उनके जीवन में ही राष्ट्रपिता कहा और उनके देहांत के बाद राष्ट्र की संसद ने इस पद को स्वीकार कर लिया।
1: बिल्कुल,
0: सामान्यतः गुलामी से मुक्त होने वाले राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा कोई पद ग्रहण नहीं किया था। यदि उन्होंने ऐसे पद की इच्छा की होती तो उन्हें निश्चित ही यह पद मिल गया होता।
1: जी बिल्कुल,
0: उन्होंने उसकी इच्छा नहीं की, इसे लेकर भी किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए तो यह स्वाभाविक था कि ऐसा लोगों ने मान लिया था कि यह कहना संगत होगा कि महात्मा शब्द भी उन्हें बोझ लगता था। तीन तीन दशकों तक कशिश उन्हें इसे झेलना पड़ा था। उनके सौभाग्य से और देश के दुर्भाग्य से गांधी जी को राष्ट्रपिता का बोझ झेलना नहीं पड़ा।
1: बिल्कुल,
0: सौभाग्य इसलिए कहा कि जिस राष्ट्र का उन्हें पिता कहा गया था उसका विभाजन हो चुका था और दोनों देश भड़ भड़ जल रहे थे। देश का दुर्भाग्य इसलिए कहा कि देश इसके बिना पिता की छत्र छाया से विहीन हो गया था।
1: जी हाँ साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी के साथ बहुत मतभेद थे। मुख्य मतभेद उनकी कार्य पद्धति को लेकर था। देश को स्वतंत्र करने के लिए दूसरे देश की मदद मिलती हो तो ले लेनी चाहिए, ऐसा

0: सुभाष बाबू मानते थे अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी की मान्यता ये थी कि दूसरे देश की मदद से अगर स्वतंत्रता आती है तो एक देश की गुलामी की बजाय दूसरे देश की गुलामी आ सकती है। इसी हिंसा अहिंसा के मतभेद के उपरांत यह दूसरा मतभेद था। गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच अन्य मतभेद भी थे, इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा होगा?
1: बिल्कुल,
0: ये प्रश्न है श्रोता साथियों, और इसका कारण ये है कि वे राष्ट्रभक्त थे और गांधी जी को उन्होंने राष्ट्र का निर्माण करते हुए देखा वो जाना था। गांधी जी राष्ट्र के निर्माता थे। देश अपनी भौगोलिक व राजनीतिक सीमा से बनता है और सिर्फ अपने इतिहास से नहीं बल्कि अपनी भावनात्मक एकता से बनता है। कई देशों को उनकी अपनी भाषा भावनात्मक एकता देती है। बांग्लादेश का उदाहरण हमारे पड़ोस में ही है। कई देश धर्म की एकता को अपने राष्ट्र की बुनियाद बताते हैं। पाकिस्तान इसका उदाहरण है अंजलि जी।
1: जी हाँ,
0: कई देश को वहाँ के राजा के कारण राष्ट्रत्व मिलता है। नेपाल इसका उदाहरण है। हमारे देश में अनेक भाषाएं थी, हमारे देश को राष्ट्रत्व मिला इसके भावनात्मक एकता से। साथियों, यह देश गुलाम है, इसे स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। यह बात कहने वाले गांधी जी कोई पहले व्यक्ति नहीं थे।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी के जितना ही स्वतंत्रता से प्रेम उनसे पहले बहुतों को था और गांधी जी के समय में भी बहुतों को था। गांधी जी की ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण स्वतंत्र देश की संसद ने उन्हीं को ही राष्ट्रपिता कहा? वो विशेषता ये थी कि गांधी जी ने इतने विशाल और इतनी विविधता वाले देश को एक भावना से जोड़ा और गढ़ा था। उन्होंने अलग अलग पुष्प एक सूत्र में बांध कर सिर्फ माला ही नहीं बनाई बल्कि उसका एक गुलदस्ता बनाया था। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस राष्ट्र को मानवों का महासागर कहा था। सागर जल में जिस प्रकार सारी नदियाँ मिलकर एक रूप हो जाती है, वैसे ही यही सारी विभिन्नताएं एकता में समा जाती है।
2: यही कशिश बात करे गांधी जी का पुरुषार्थ इस देश को ऐसी ही एकता प्रदान करने का था, इसी से सुभाष बाबू ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा।
0: बिल्कुल,
2: उनके इस शब्द ने समग्र देश की आवाज को प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी ने एक एक ईंट लगाकर राष्ट्र के भवन का निर्माण किया था। श्रोता साथियों, इस पर हम थोड़ा सविस्तार विचार करेंगे कि अहमदाबाद के सर्किट हाउस में जब विशेष अदालत में मुकदमा चला तो न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी से नाम धाम पूछ कर उनका धंधा पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में गांधी जी देशभक्ति या समाज सेवा या ऐसा ही कुछ कह सकते थे। जैसा कि अनेक लोग बताते हैं कि गांधी जी ने उत्तर में कहा किसान और बुनकर। इस प्रकार उन्होंने दो विशाल वर्गों के साथ अपनी आत्मीयता व्यक्त की। गांधी जी का यह उत्तर देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया और अवश्य ही असंख्य किसानों और बुनकरों के हृदय में इसने प्रतिघोष किया होगा कि यह हमारे बीच का ही आदमी है। वे लोग यह बात भी देखकर समझ गए होंगे कि यह उत्तर कोई अखबार में प्रचार करने के लिए नहीं दिया गया था। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में बेरिस्टरी छोड़कर फिनिक्स में छापे खाने में अक्सर जोड़ने के साथ साथ खेती का काम किया था।
0: बिल्कुल,
2: साबरमती में उन्होंने हथकरघे पर खादी बुनी थी। प्रत्यक्ष इस काम के साथ उनके दिल के तार भी किसानों और बुनकरों के साथ जुड़ते जाते थे। संत कबीर जब करघे पर बैठते तब उनके हृदय के तार जैसे अनेक साहेब यानी कि परमात्मा के साथ जुड़ते जाते थे, वैसे गांधी जी के प्रत्येक काम में सत्य की खोज थी। तभी तो उन्होंने अत्यंत सहजता से कहा किसान और बुनकर। देश के किसान और बुनकर देख रहे थे कि गांधी जी का निरंतर प्रयास भी उनकी तरह मेहनत और गरीबी का जीवन जीना था।
0: बिल्कुल,
2: गांधी जी का न्यायाधीश को दिया गया उत्तर अकृत्रिम था। तभी तो वे एकात्मक साधक थे। वे देख रहे थे कि गांधी जी के आश्रम में खेती भी थी और बुनाई का काम भी था। उनके आश्रम में किसान भी थे और बुनकर भी थे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में राष्ट्रपिता प्रकरण चल ही रहा है और इसी प्रकरण से जुड़ी और भी बातें हैं जो कार्यक्रम में आगे हमारी बनी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
2: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे कि गांधी जी के आश्रम में किसान भी थे और बुनकर भी थे। यही साथियों, अगर बातचीत को आगे बढ़ाएं तो गरीबों या सामान्य जनता और अनपीढ़ी समझी जाने वाली जनता के साथ तादात्म्य साधने का गांधी जी का दूसरा उपाय मातृभाषा विषयक उनके आग्रह में प्रकट था। वे स्वयं तो गुजरात में गुजराती और गुजरात से बाहर हिंदी में बोलते या भाषण देते थे। जिन सभाओं को उन्होंने बुलाया होता उनमें दूसरे नेताओं से भी ऐसा ही करने का आग्रह रखते थे।
1: जी जी।
0: गांधी जी से पहले अंजलि जी नेताओं में अंग्रेजी में भाषण देने का रिवाज था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को एक बार बंगाल के गांव में बंगला में बोलना पड़ा। इस बात का स्वयं उन्हें इतना अचरज था कि अपनी

0: आपके कई साथी राजनीति कर रहे हैं तो दूसरे साथी रचनात्मक कार्य में संलग्न है, मुझे इन दोनों के मध्य सेतु बनना है। गांधी जी ने क्षण भर भी विलंब किए बिना मुझे इसका पाठ्यक्रम सुझा दिया। यह तो बहुत आसान है, तो यूं कर खादी के काम की समस्त प्रक्रियाओं में प्रवीण बन जा और देश की तमाम भाषाएं सीख ले।
1: बिल्कुल साथियों, गांधी जी का यह सरल पाठ्यक्रम अलबत्ता में तब से 60 वर्ष बाद भी पूरा नहीं कर सका, परंतु इस पाठ्यक्रम में देश की एकात्मकता की कुंजी भी थी। ये समझ पाना बहुत कठिन नहीं है साथियों, देश को एक जागृत राष्ट्र बनाने में गांधी जी ने एक दूसरा भी पुरुषार्थ किया था। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, यदि महिलाएं जागरूक न हो तो आधा देश नींद में ही रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसके उपरांत देश के बालकों में भी चेतना लाने का काम मुख्य रूप से उनकी माताएं ही किया करती हैं। महिलाओं को राष्ट्र के प्रति जागृत करने का जितना काम गांधी जी ने किया उतना शायद ही किसी दूसरे ने किया होगा। अंजलि जी, नारी शिक्षण के महान आचार्य महर्षि कर्वे ने कहा था कि नारी जागृति का जितना काम मैंने आधी सदी में किया उतना गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में कर दिया।
0: बिल्कुल।
1: और महिलाओं में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ना गांधी जी के राष्ट्र निर्माण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग था।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, अगले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी इसी प्रकरण में मुलाकात फिर से रहेगी नई बातों के साथ में।
1: जी हाँ।
0: तब तक के लिए श्रोता साथियों, दीजिए अनुमति कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन से जाने की आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत रही थी, संविधान और आदिवासी में हम जान रहे थे, भील विद्रोह 1800 से लेकर 1925 के बारे में हमने जाना, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बारे में हम जान पाए, इसी के साथ हमने मुंडा विद्रोह 1895 और 1900 के बारे में जाना, और उसी में हम आगे जान रहे थे संविधान निर्माण प्रक्रिया और आदिवासी को लेकर।
1: जी हाँ,
0: तो उसी में आगे बात करें हम तो श्रोता साथियों, ब्रिटिश सरकार ने भारत की आबादी के बहुत बड़े हिस्से को क्रिमिनल टाइबस एक्ट 1871 और 1911 के तहत आपराधिक जातियां घोषित कर दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपना जीवन जीने के लिए अपराध का सहारा लेने वाली जातियां हैं, इन्हें जरायम पेशा कहा जाता था। यह कानून भी संविधान के साथ समाप्त नहीं हुआ था, इसे वर्ष 1952 में समाप्त किया गया।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि इसे 1952 में समाप्त किया गया, तो विचित्र बात है कि इसे पूरी तरह समाप्त करने के बजाय इसके स्थान पर आदतन अपराधी अधिनियम 1952 बना दिया गया। साथियों, भारत में जरायम पेशा जनजातियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया, विमुक्त जनजाति 198 समूह और घुमंदू जनजाति 1500 समूह, इनके साथ आज तक भेदभाव होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, सभ्यता के बीच रहने वाले 1.30 करोड़ लोग आज भी वन्य अवस्था में हैं और वंशानुगत अपराधियों का जीवन जी रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने इस बात की शर्म महसूस नहीं की। वे संभवतः यह स्वीकार नहीं करेंगे कि लोगों ने उन्हें सभ्य बनाने की, चिकित्सा सहायता देने, उनकी स्थिति बेहतर करने या समग्र नागरिक बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मान लीजिए कि कोई भी आदिवासियों के लिए वह सब करना चाहता है जो ईसाई मिशनरियां कर रही है, तो क्या वह कर पाता? मेरा उत्तर है कि नहीं, क्योंकि आदिवासी की स्थिति बेहतर बनाने का मतलब है उन्हें अपना समझकर अपनाना, उनके बीच रहना और उनके साथ भ्रातृत्व की भावना विकसित करना, यानी उनसे प्रेम करना। किसी भी लोगों के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? उसका पूरा जीवन अपनी जाति जो बचाए रखने की उद्विग्न चेष्टा में बीतता है। जाति उसकी बहुमूल्य संपत्ति है। वैदिक दिनों की घृणित अनार्यों के अवशेष आदिवासियों के साथ संपर्क कायम कर वह इसे खो देने के लिए सहमत नहीं हो सकता।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें कि आर्यों ने भारत के देशज लोगों को अनार्य कहा, वेदों में भी देशज लोगों को अनार्य कहा जाता है। आर्यों ने भिन्न जीवन पद्धति और जीवन शैली के कारण अनार्यों को अपने धार्मिक ग्रंथों में घृणित रूप से चित्रित किया। वास्तव में भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ने जो चरित्र अख्तियार किया वह आदिवासी समाज को असहज बनाता है और उन्हें व्यापक भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं बनने देता। संविधान बनने की प्रक्रिया में भी उनके मूल सवालों को सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। रियासतों, जाति, हिंदू मुस्लिम और राज्य व्यवस्था से जुड़े विषयों पर शब्द और अर्थ दोनों ही संदर्भों में बहस हुई, किंतु आदिवासी अस्मिता के सवाल को उठाए जाने के बावजूद उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था।
1: बिल्कुल अंजलि, सच है कि स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के समय सांप्रदायिकता, छुआछूत और जातिगत शोषण पर बहस चरम पर थी। इन पर राजनीतिक चेतना भी उच्च स्तर पर थी। दूसरी ओर भारत में आदिवासियों के हकों और अस्मिता के सवाल पर तुलनात्मक रूप से बहुत कम बहस और पहल हुई। दलित समुदाय, छुआछूत और जाति के विषय पर बहस गंभीर थी और उसी में थोड़ा स्थान आदिवासियों को भी दे दिया गया।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें संविधान सभा में आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर प्रावधान और व्यवस्था बनाने का काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उप समिति द्वारा करना तय हुआ था। इन समिति ने अल्पसंख्यकों को तीन भागों में बांटा था, वर्ग अ जिसमें भारतीय संघ में रियासतों को छोड़कर आधे प्रतिशत की कम आबादी वाले यानी एल्गो इंडियन, पारसी और असम के मैदान में रहने वाले कबीले, वर्ग ई में बताया गया कि वे जिनकी आबादी 1.5% से अधिक नहीं है यानी भारतीय ईसाई और सिख, वर्ग ऊ वे जिनकी आबादी 1.5% से अधिक है यानी कि मुस्लिम और अनुसूचित जातियाँ।
1: बिल्कुल,
0: बताना चाहेंगे श्रोता साथियों के स्वतंत्रता आंदोलन आदिवासियों के साथ भेदभाव के बारे में, उस दौर का आदिवासी नेतृत्व इस बात को लेकर सजग था जागृति जी कि अगर आदिवासियों को किसी खास पहचान में बांधा गया, मसलन अगर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया गया, तो आगे चलकर उनकी मूल निवासी की पहचान पर सवालिया निशान लग सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान दलित और आदिवासियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। आदिवासी नेता अपने समुदाय को अल्पसंख्यक

0: श्रेणी में रखे जाने से सहमत नहीं थे। उनकी बुनियादी मान्यता थी कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और किसी भी अन्य समुदाय से पहले से भारत भूमि पर निवास करते आए हैं। उन्हें अलग श्रेणी में रखना गलत नीति है, क्योंकि इससे ये मान्यता स्थापित होगी कि आदिवासी भारत में हाल की कुछ सदियों में आकर बसे हैं और इस आधार पर उनके साथ द्वयम दर्जे का सलूक होने लगेगा।
1: जी बिल्कुल।
0: संविधान सभा के मुखर और सजग आदिवासी स्वयं जयपाल सिंह मुंडा ने 24 अगस्त 1949 को संविधान सभा में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यदि किन्हीं लोगों को भारत में राज करने का अधिकार है तो आदिवासियों को ही है। वे प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और अन्य लोग दूसरी, तीसरी, चौथी अथवा किसी अन्य श्रेणी के भारतीय हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी बातों को जान रहे थे, हम जान रहे थे आदिवासियों के साथ हुए भेदभाव को लेकर, तो श्रोता साथियों आगे इसी में और बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र पढ़कर आने वाले जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में बिहार से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर आए थे। उनके इस बयान से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि वह मूल निवासी की पहचान के पैरोकार थे। वे भेदभाव की राजनीति को समझ चुके थे। यही कारण है कि वह स्वतंत्र हो रहे नए भारत की शासन व्यवस्था में आदिवासियों की मूल पहचान बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: उनकी यह आपत्ति भी उचित थी कि संविधान सभा में आदिवासी समुदाय से जुड़ी बहसों में उनको देश के एक ऐसे समूह के रूप में पेश किया जा रहा था जो लाचार था। उन्होंने कहा भी कि हम किसी प्रकार की भीख नहीं मांग रहे हैं। बहुत अल्पसंख्यक समुदाय ने पिछले 6000 वर्षों में जो पाप किए हैं उनके लिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए। इसका निर्णय वे करे कि भूतपूर्व शासकों ने इस देश के आदिवासियों के साथ न्याय किया या नहीं, ये हमारे लिए सवाल था।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ अंजलि अगर बात करें मुंडा के कहने को लेकर, तो मुंडा का कहना था कि तत्कालीन राजनीति में कांग्रेस ने भी आदिवासियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान नहीं किया। बिहार में आदिवासियों की जनसंख्या 41 लाख थी, लेकिन वहां की विधानसभा में केवल 7 आदिवासी चुने गए। इसी के साथ साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे संविधान सभा अल्पसंख्यक कहे जाने का विरोध, यानी कि असमानता की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे बिना विशेष संवैधानिक प्रावधानों के पाटा भी नहीं जा सकता है। ये खाई केवल आर्थिक गरीबी के कारण नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के प्रति सांस्कृतिक सामाजिक सामंती भावनाओं के कारण भी गहरी हुई है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इस विषय पर संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने 27 अगस्त 1947 को सभा में कहा कि मैं भी परामर्श समिति का सदस्य हूँ, किंतु अभी अपने साथियों को रिपोर्ट के लिए बधाई देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। हम संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक है, इस बात को सामने रखकर हम यहाँ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं या मुसलमानों से हम कम हैं अथवा पारसियों से अधिक, हमारी इस स्थिति का इस बात से कोई संबंध नहीं। हमारा पक्ष तो इस बात पर निर्भर है कि हमारे और जाति के अन्य लोगों के सामाजिक आर्थिक और शिक्षा स्तरों में जमीन और आसमान का फर्क है, और यह संविधान द्वारा लगाई गई किसी विशेष शर्त द्वारा ही संभव हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: हम लोगों को साधारण जनता के तल तक लाया जा सके। मेरे विचार में आदिवासी अल्पसंख्यक नहीं है। मेरा तो हमेशा से यही ख्याल रहा है कि वे लोग जो देश के आदि स्वामी थे, उनकी संख्या चाहे कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, कभी भी अल्पसंख्यक नहीं समझे जा सकते। उन्हें ये अधिकार परंपरा से प्राप्त हुआ है और संसार में कोई भी उनसे ये छीन नहीं सकता।
1: जी हाँ।
0: हम इस समय परंपरा से प्राप्त इन अधिकारों की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरे लोगों से जो व्यवहार होता है उसी की मांग कर रहे हैं। भूतकाल में हमें इस तरह अलग अलग रखा गया था मानो कि हम किसी चिड़ियाघर में रहते हों। इसके लिए मुझे बड़े राजनीतिक दलों, अंग्रेजी सरकार और प्रत्येक शिक्षित भारतीयों को धन्यवाद देना है।
1: बिल्कुल अंजलि, आदिवासी और ऐतिहासिक अन्याय के शिकार को लेकर हम बात कर रहे थे। जयपाल सिंह ने कहा कि आदिवासी समुदाय अन्य समुदाय के साथ मेलजोल के लिए तत्पर है तथा अन्य समुदाय को भी इस दिशा में सहजता से आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी जी,
1: उन्होंने कहा हमारा कहना तो यह है कि आपको हमारे साथ मिलना ही होगा और हम भी आपके साथ मिलने के लिए तैयार है। इसी कारण से तो हमने धारा सभाओं में स्थानों की सुरक्षा के लिए जोर लगाया है ताकि हम आपको समीप आने के लिए बाध्य कर सके और स्वयं अवश्य ही आपके समीप आए। हमने पृथक निर्वाचन की कभी मांग नहीं की और वस्तुतः हमें यह कभी प्राप्त नहीं हुआ। केवल आदिवासियों के एक छोटे से अंग को जो अन्य मतों को और विशेषकर पाश्चात्य ईसाई को अपना चुका था, पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ, परंतु इनकी बहुत बड़ी संख्या जहाँ कहीं पर भी उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था साधारण निर्वाचन के ही मातहत थी। हाँ, उनके लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए थे, अतः जहाँ तक आदिवासियों का संबंध है कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु आंकड़ों की दृष्टि से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है।
0: जी बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य के तहत चुनाव हुए तब भी आदिवासियों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जयपाल सिंह ने संविधान सभा को बताया कि सन 1935 के एक्ट के अनुसार भारत की सारी प्रांतीय धारा सभाएं यानी राज्यों में के 1585 सदस्यों में से आदिवासियों के केवल 24 सदस्य ही थे, केंद्र में तो एक भी उनका सदस्य न था।
1: जी हाँ।
0: अब वयस्क मताधिकार विधि के अनुसार जो प्रत्येक लाख आबादी के पीछे एक सदस्य भेजने का अधिकार देती है, हमारी स्थिति में बड़ा भारी फर्क आएगा। अब यह गिनती पहले से 10 गुना होगी। जब मैं भारत का जिक्र करता हूँ तो क्या मैं देसी रियासतों से भी यह निवेदन कर सकता हूँ कि देसी रियासतों में आदिवासियों को कहीं थोड़ा सा भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय भारत के भाव वहाँ पर भी उचित रूप से प्रवेश कर जाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ सभा में अनुचित जातियों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की बात कही गई, किंतु आदिवासियों को इस मामले में भुला ही दिया गया। इस विषय पर जयपाल सिंह और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बीच नोकझोंक भी हुई। किसी के द्वारा ये कहे जाने पर कि अल्पसंख्यक और कबायली विदेशियों का मुंह ताकते हैं, जयपाल सिंह ने कहा कि हम विदेशियों का नहीं देशवासियों का मुंह ताकते हैं।
2: जी जी,
1: हम विदेश नहीं गए, हम बातचीत करने लंदन नहीं गए, हम कैबिनेट मिशन के पास नहीं गए, हम केवल अपने देशवासियों की ओर देखते हैं कि वह हमसे समुचित और न्याय सम्मत व्यवहार कर सके। गत 6000 वर्षों से हमारे साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। सलाहकार समिति में किसी आदिवासी महिला सदस्य का नाम नहीं है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो ये तो आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने ढेर सारी बातों को जाना। हम जान पाए कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों के साथ हुए भेदभाव को लेकर, अल्पसंख्यक कहे जाने का विरोध, और इसी के साथ हमने जाना ऐतिहासिक अन्याय के शिकार आदिवासी को लेकर।
1: जी हाँ।
0: अगले रविवार को हमारी श्रोता साथियों से फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ में।
1: बिल्कुल साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
4: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो,
1: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो,
1: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
0: नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर, लेकर हाजिर हो चुके हूं श्रोता साथियों आपका पसंदीदा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर, जहां हम हर रेसिपी में बात करते हैं स्वाद और परंपराओं की और बचपन के यादों के तड़कों की। श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हम परंपरागत रेसिपीज की विधि के बारे में जानते हैं। तो आज भी दादी माँ की रसोई में हम लेकर हाजिर हैं रागी का चिल्ला और रागी के हलवे को लेकर। तो ये दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट चीजें हैं। तो बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन श्रोता साथियों कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं रागी का चिल्ला और रागी का हलवा हम कैसे बनाएं। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो जैसा कि मैम आप समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ती हैं और श्रोता साथियों को ढेर सारी ऐसी जानकारियों से अवगत करवाती हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आज भी हमारे कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जुड़ेगा। आज हम जानेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में कि कौन से ऐसे परंपरागत व्यंजन हैं जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और फिर से उन्हें हमें हमारे जीवन में अपनाने की जरूरत है। तो आज कार्यक्रम के माध्यम से आप मैम कौन सी ऐसी व्यंजन विधि के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताने जा रही हैं जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है?
1: रागी के बारे में हम आज बात करेंगे। रागी एक परंपरागत खाद्य पदार्थ है हमारे यहाँ पे।
0: बिल्कुल,
1: आदिवासी क्षेत्र में सदियों से होता है लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होने लगा है। तो आज हम रागी के बारे में बात करेंगे ताकि विलुप्ति की कगार से जो रागी है उसको हम फिर से अपनी रसोई का हिस्सा बना सके और फिर से हम हमारी थाली का हिस्सा बना के और पौष्टिकता का आहार सेवन करने में उसका मदद ले सके।
0: बिल्कुल, आज हम रागी से क्या बनाने वाले हैं?
1: देखो अपन दो डिश की बात करेंगे आज, है ना। तो एक नमकीन डिश और एक मीठी डिश। तो अभी हम पहले मीठे से शुरू करते हैं, कोई भी अच्छा काम हमें मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रागी का हलवा कैसे बनता है इसके बारे में बताना चाहूंगी ताकि हमारी आदिवासी बहनें को सुने और सीखें और अपनी रसोई में अच्छा हलवा बना के और अपने परिवार को खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो मैम इसके लिए हमें सामग्री क्या चाहिए होगी?
1: इसके लिए हम जो सामग्री काम में लेने वाले हैं ना वो हमारी रसोई में ही निकल जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सबसे पहले चार लोगों के लिए तैयार करते हैं आज रागी का हलवा। सीखते हैं कि चार लोगों के लिए अगर हमें रागी का हलवा तैयार करना है तो उसमें हमें किस तरह से सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें रागी का आटा लेना होगा। तो सभी बहनों की रसोई में कटोरी तो होती ही है, एक कटोरी रागी का आटा लेना होगा।
0: बिल्कुल,
1: और ये हलवा जो हम बनाएंगे ये घी में भी बनाया जा सकता है और सरसों के तेल में भी बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें चार चम्मच तेल या घी लेना होगा इसके लिए। और तीसरी चीज जो होगी इसमें गुड़ को कद्दूकस किया हुआ होगा, तो ये पूरी कटोरी भर के नहीं चाहिए हमको, तीसरा हिस्सा जो होता है मतलब आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा कटोरी हम गुड़ लेंगे। और हम चाहें तो स्वाद के अनुसार इसको एक कटोरी भी ले सकते हैं अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो।
0: बिल्कुल,
1: एक और चीज जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में होती है महुआ। महुआ का भी सूखा गुड़ जैसा तैयार किया हुआ कुछ होता है, उसे भी हम इसी जगह उसमें मिला सकते हैं गुड़ की बजाय।
0: बिल्कुल,
1: फिर यहाँ पे हमें तीन कटोरी पानी लेना होगा और अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम इलायची पाउडर ले लेंगे आधा चम्मच, और इसमें हम इसको और ज्यादा पौष्टिकता लाने के लिए हम हमारे पास में उपलब्ध सामग्री में से तिल ले सकते हैं, भुनी हुई